0: महत्वपूर्ण पुलों को बहा ली गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से यह आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हेन्दे नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। चीन के सरकारी चैनल ने बताया कि चीन की सीमा पर 3 लोगों की मौत हो गई है और 265 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में इलाज चल रहा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेजती है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779701075000। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पेइचिंग में भारतीय दूतावास ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 0086185142849 05। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 50 भारतीय तीर्थयात्री भी लापता लोगों में शामिल हैं। अब तक विनाशकारी बाढ़ के बाद कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों से 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रूपये देने की पेशकश की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ से हुई जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन ड्यूजारिक ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों और तत्काल सहायता में सहयोग कर रहा है। श्री गुतरश ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। नेपाल में बाढ़ को देखते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिहार सरकार ने गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित गंडक नदी के किनारे बसे जिले के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज में नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। आज सुबह बैराज से करीब 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कल रात दर्ज किए गए 1,50,000 क्यूसेक डिस्चार्ज का लगभग आधा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अन्य संवेदनशील जिलों में भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बिहार सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार पटना।
0: राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हाई अलर्ट को देखते हुए उच्च स्तरीय टीम भी गठित की गई है।
3: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार अगर राज्य का कोई भी नागरिक नेपाल में फंसा है या उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो उनके परिवार वाले तुरंत 1070 पर संपर्क कर सकते हैं।

0: राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दूतावास स्तर पर संपर्क शुरू कर दिया है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। ये कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है जो योग्य अमरीकी नागरिकों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने 18 अरब अमरीकी डॉलर का भुगतान करने और अपने फेसबुक तथा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए और भी कड़े उपाय करने पर सहमति व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
2: अदालत की मंजूरी मिलने पर यह समझौता मेटा के खिलाफ राज्यों की ओर से दायर मुकदमों को रोक देगा। मेटा ने कहा है कि किशोरों को अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और उपयोगी अनुभव प्रदान करना कंपनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेटा ने प्रतिद्वंदी टिकटॉक और यूट्यूब से भी इसी तरह के सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह किया। यह समझौता कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी से जुड़े एक अदालती मामले का निपटारा करेगा जो 2023 में मेटा पर मुकदमा दर्ज करने वाले 29 राज्यों में शामिल थे। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि मेटा ने बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म की लत लगाने वाले फीचर्स जानबूझकर डिजाइन किए और इसके बारे में लोगों से जानकारी छिपाई जिससे युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के विकार पैदा हुए। मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि मेटा ने माता पिता की सहमति के बिना 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डेटा नियमित रूप से एकत्रित करके संघीय कानूनों का उल्लंघन किया। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: सिक्किम के ग्रैंड मास्टर त्रिलोक सुब्बा विश्व ताइक्वांडो पूमसे चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: सिक्किम की शान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त ताइक्वांडो खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर त्रिलोक सुब्बा का चयन दक्षिण कोरिया के चुनजोन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ है। यह चैंपियनशिप 16 से 20 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। ग्रैंड मास्टर सुब्बा सीनियर वर्ग में अंडर 60 पुरुष व्यक्तिगत पुमसे और टीम पुमसे में हिस्सा लेंगे। इस चयन से पहले सुब्बा ने जुलाई 2026 में महाराष्ट्र में आयोजित नेशनल ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय टीम में अपना स्थान निश्चित किया है। मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर है। दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पांचवें दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 6 विकेट पर 253 रन बना लिए हैं। श्रीलंका ने कल के स्कोर 6 विकेट पर 229 रन से आगे खेलना शुरू किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। अमेरिका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good morning, this is Akashwani. I am VC Pramod with the World News. The headlines. Massive flash flood claims nearly 160 lives in Nepal. Over 750 people, including 133 Indians, missing. High alert issued in Bihar and Uttar Pradesh following Nepal flood. India sends first tranche of relief materials to Nepal. US halts all visa appointments globally amid President Donald Trump's immigration crackdown. Meta to pay up to $18 billion to settle claims that its platforms harm children. And in men's cricket, Team India on verge of Test Series win against Sri Lanka in Colombo. Nearly 160 people have been killed and over 750, including 133 Indian nationals, remain missing after a massive flash flood swept through central Nepal yesterday. Originating in Tibet, the flood devastated several towns and villages, washing away critical bridges and crippling a dozen hydropower projects.

है, मैं हूं नीतू आपके साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। और आज क्योंकि गायक मुकेश की पुण्यतिथि है तो हर कोई उनकी उनके गाए गीतों की फरमाइश कर रहा है और हम आपकी भावनाएं पूरी तरह से समझते हैं। आप फैंस हैं और डेफिनेटली आपको उनके गाने सुनने हैं। एक आध गाने को छोड़कर मैं ज्यादा गाने नहीं

प्ले कर पाऊंगी क्योंकि उन पर एक स्पेशल प्रोग्राम जा रहा है। 1:10 पर आप सुनेंगे वो प्रोग्राम जो कि बिल्कुल गायक मुकेश पर ही आधारित है, तो आप उनके गीत उस प्रोग्राम में भरपूर सुनिए, पूरा एंजॉय कीजिएगा उस प्रोग्राम को। दिल का मेल बॉक्स में आपकी पसंद के गीत भी शामिल हो रहे हैं, एक एक करके मैं आपको गाने सुनवाऊंगी। लेकिन पहले बता देती हूँ कि और जो लोग अभी अभी जिन्होंने इस प्रोग्राम को ट्यून इन किया है वो किस तरह से अपनी रिक्वेस्ट हम तक पहुंचा सकते हैं, उसका एक जरिया है कि आप हमें मेल कर सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर। एक आध गाना जो कि मैं मुकेश जी की आवाज का है वो मैं आपको सुनवा रही हूं, तो शुरुआत उसी गाने से कर रहे हैं। इस गाने की फरमाइश भेजी है धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा परिहार ने।

पुकारने का तरीका, और ये जो फिल्म थी रानी रूपमती, इस फिल्म के सभी गाने कितने मशहूर हुए थे, और खास तौर पर ये गाना तो लाजवाब है, आज तक लोग पसंद करते हैं और उस समय तो बहुत ही मशहूर हुआ था। अब अगला जो गाना है ना, वो भी बहुत ही मशहूर हुआ था अपने ज़माने में, हालांकि इस गाने को सुनकर आप इमेजिन नहीं कर पाते कि ये किस हीरो पर पिक्चराइज होगा, लेकिन शायद गाना सुनने के बाद जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता चलेगा। अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम और निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजल मलिक, इन सबकी पसंद पर है एक सपेरा एक लुटेरा फिल्म से ये गाना। पहले आप गाना सुनिए और फिर बताइएगा कि किस पर पिक्चराइज्ड है ये गाना। तो आइए सुनते हैं ये गाना।

बिल्कुल, आने वाला पल अब जाने ही को है। राजेश कुलकर्णी, गौरी कुलकर्णी और राघव की पसंद पर आपने अभी ये गाना सुना, और इसके बाद जो अब गाना आप सुनने जा रहे हैं वो दिग्दर्शन और कविता गौर की फरमाइश पर है। तो आइए सुनते हैं ये गाना।

दूजे के लिए फिल्म से ये गाना था। और आपको पता है कि ये फिल्म जब बन रही थी तो रति अग्निहोत्री और कमल हसन, जो कि फिल्म के हीरो हीरोइन हैं, जो कि फिल्म में एक लव बर्ड बने हुए हैं, वो असल जिंदगी में एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। सेट पर भी बस टेक देने के बाद एक इधर मुंह करके बैठ जाता था और एक उधर मुंह करके बैठ जाता, और फिल्म देखकर आपको अंदाजा भी नहीं होता कि ऐसा हुआ होगा। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर की पसंद के इस गाने से दिल का मेल बॉक्स को समाप्त करते हैं। यहीं पर आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। इस गाने के बाद समाचार सुनिएगा। समाचारों के बाद नीतू फिर से हाजिर हो जाएगी लेकर तस्वीर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में आयोजित किया जाएगा। ये संवाद युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ने का सीधा माध्यम प्रदान करेगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर हैं। वे गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और अहमदाबाद में होने वाले आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 300 भारतीय नागरिकों सहित कई लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पन बिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: नेपाल के विदेश मंत्री

0: खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से यह आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हेन्दी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ है। इस बीच विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। श्री सिंह ने एक समाचार एजेंसी से कहा कि नेपाल में आई आपदा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल की सरकार के साथ लगातार राहत और बचाव कार्य के लिए समन्वित प्रयास कर रहा है। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया कि प्याज को 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नासिक से रवाना हो चुकी है और लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आज देर शाम या कल सुबह तक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इसके पहुंचने की उम्मीद है। अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। यह कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो योग्य अमरीका वासियों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों का फायदा ले रहे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच कोलंबो में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने दूसरी पारी में 89 रन की बढ़त बना ली है। भारत पांचवें और अंतिम दिन आज श्रीलंका की पारी को जल्द समाप्त करके निर्धारित लक्ष्य का पीछा करेगा। मौसम विभाग ने कल तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी आज इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Nearly 160 people have been killed and over 750 remain missing, including 133 Indian nationals, after a massive flash flood swept through central Nepal yesterday. Originating in Tibet, the flood devastated several towns and villages, washing away critical bridges and crippling a dozen hydropower projects. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal told the parliament that an earthquake hit the Tibet region at 8:37 a.m. local time and the flash floods were reported 3 minutes later, suggesting a glacial outburst due to the tremors, which triggered the floods. More from our correspondent.
3: Nepal's National Disaster Risk Reduction and Management Authority said the massive flood entered the Trishuli River through the Bhote Koshi in Timur, a border town in Rasuwa district. Due to the rock slide and swelling of the Lende River, situated along the Nepal-Tibet border, it then spread along the river course to other districts like Nuwakot, Chitwan, Gorkha, Tanahu and Nawalparasi East, covering areas ranging to nearly 200 kilometers from the capital Kathmandu. Nepal police said 157 people died in the flash flood. The Nepal government said around 500 people are missing.

तस्वीर शुरू हो गया है। नीतू है आपके साथ 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर, और आज हम बात करने वाले हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क की, जो कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और ये पार्क वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का हिस्सा है और बाघों, हाथियों और कई दूसरे वन्य जीवों को सुरक्षित आवास देता है। यानी आपको जंगल और जानवरों का साथ पसंद है तो आज का तस्वीर आप ही के लिए है।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई।

मैं पेड़ से, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ।

बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बना वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हिमालय की तराई वाले क्षेत्र में फैली जैव विविधता की एक अनोखी मिसाल है। ये दो देशों के वन क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण इलाका है जो पर्यावरण के नजरिए

से बहुत अहम है। इस वन क्षेत्र में घने जंगल, नदियां, घास के मैदान और पहाड़ी भूभाग मिलकर एक ऐसा कुदरती वातावरण बनाते हैं जहां वन्य जीवन को अपने सहज रूप में देखा जा सकता है। प्रकृति प्रेमी हैं अगर आप, या फिर आपको वन्य जीवन पसंद आता है, तो आपके लिए ये जो जगह है ये बिहार का एक खास आकर्षण है।

हम आज बात कर रहे हैं तस्वीर में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की, और इसका नाम सुनकर ही आपको पता चल गया होगा कि ये ऋषि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। आसपास के इलाकों में जो वाल्मीकि आश्रम जो है उसके आसपास के इलाके जो हैं वो धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बाघ इस इलाके की सबसे प्रमुख पहचान है, लेकिन इनके अलावा तेंदुआ, हिरण, नील गाय, जंगली सुअर, भालू, गौर और बहुत सारे अन्य जीव भी ना यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इतने सारे जीव जंतु देखकर शायद आपको और भी बहुत कुछ याद आ जाए। यहाँ पर नदी और जंगल वाले इलाकों में सांप, मगरमच्छ और कछुए जैसे सरीसृप भी पाए जाते हैं। इस पार्क में पक्षियों की 200 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं, जिससे कि ये जो पक्षियों को देखने वाले जो शौकीन होते हैं ना, बर्ड वॉचर्स जिन्हें कहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया है और उनको बहुत मजा आने वाला है यहाँ जाने के बाद। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसी तरह से प्लान कीजिए ताकि आप पक्षियों की जो पूरी दिनचर्या है उसको भी देख पाएं, महसूस कर पाएं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की।

0: उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

दशमलव एक आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर तस्वीर सुन रहे हैं आप और तस्वीर में बातें हो रही हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि सिर्फ वन्य जीवन के लिए नहीं बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। जंगलों के बीच बहती गंडक नदी, शांत जलधाराएं और हरियाली से घिरे रास्ते आपको एक अलग ही अनुभव देते हैं। इस इलाके से पंडई, मसान, हरहा और मनोर जैसी नदियां बहती हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं और जीवन को बनाए रखती हैं। गंडक नदी में बोट सफारी, जंगल सफारी और प्रकृति भ्रमण के माध्यम से आप इस क्षेत्र की खूबसूरती को करीब से महसूस कर सकते हैं। और बोटिंग तो ना आप नदी हो, झील हो और एक बोट हो, बस और क्या चाहिए।

ये तो खूबसूरत गाना था ना। कहना ना कहना, बात को समझ जाना, कितना आसान लगता है गानों में, और जब आप रियल लाइफ में इस तरह की सिचुएशन से अगर आप उलझें तो आपको पता चलता है कि सब कुछ कितना मुश्किल होता है रियल लाइफ में गानों के अलावा। खैर, तस्वीर की बात हो रही है। तस्वीर में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि मुख्य रूप से वहां पर ना साल के जंगल हैं। इनके अलावा यहाँ पर जो पौधे पाए जाते हैं उनमें सागौन, बांस, सेमल, खैर और बैंत जो है वो शामिल हैं। वनस्पति में मौसमी बदलाव के कारण साल भर वन्य जीवों के लिए यहाँ पर भोजन और आश्रय की लगातार आपूर्ति बनी रहती है। घास के मैदान चरने वाले जानवरों के लिए सहायक होते हैं, जबकि जो जंगल हैं उन्हें सुरक्षा और प्रजनन की जगह देते हैं। यहाँ के कुछ इलाके मौसमी बाढ़ से वेटलैंड और घास के मैदान बने रहते हैं, जो जैव विविधता के लिए बहुत जरूरी भी है। इस पार्क में नदी के किनारे वाले जंगल और दलदली इलाके भी हैं, जो पूरे इलाके की इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बढ़ाते हैं।

जहां भी आप घूमने जाते हैं ना, वहां पे वाकई में उतना सब कुछ समय बिताइए कि आपको आपका जो दिल है वो भर जाए, क्योंकि बाद में आपको वो समय फिर से नहीं मिलने वाला है। और ऐसा ही है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और क्योंकि ये बिहार में है, तो इस इलाके की संस्कृति में बिहार और तराई क्षेत्र की लोक परंपराओं की झलक दिखाई देती है। आसपास के गांव के रहने वाले जो लोग हैं, वो अपनी सरल जीवन शैली, लोक कला और पारंपरिक रीति रिवाजों के लिए जाने जाते हैं। और जब आप यहाँ की यात्रा करते हैं, तो आप भी उस स्थानीय जीवन को समझ सकते हैं, वो मौका आपको मिल सकता है, स्थानीय भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं।

उड़ के भी जाना चाहे तो पहले मौसम का पता होना चाहिए ना कि वहां जाने का सबसे अच्छा मौसम जो है वो कौन सा है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान घूमने का सबसे बेस्ट मौसम है अक्टूबर से मार्च के बीच। इस दौरान सब कुछ बड़ा अच्छा अच्छा रहता है, ज्यादा बारिश नहीं है, ज्यादा बर्फ नहीं है, और बर्फ तो खैर पड़ती नहीं है वहां पर, लेकिन हाँ आपको वन्य जीवों को देखने की जो संभावना है वो इस दौरान सबसे ज्यादा होती है। गर्मियों में आप जाते हैं तो सफारी का अनुभव ले सकते हैं, लेकिन दिन के समय तापमान ना बहुत बढ़ सकता है, इसीलिए गर्मियों में थोड़ा सा लोग अवॉइड करते हैं जंगल में घूमना। मॉनसून के दौरान कई क्षेत्र जो हैं वहां पर प्रवेश सीमित हो जाता है, यानी आपको एंट्री शायद ना मिले, इसीलिए जब आप यात्रा के लिए निकलें और तो पहले से ही जानकारी जुटा लीजिएगा ताकि आप इस इलाके का भरपूर मजा ले पाएं और अच्छी तरह से इस इलाके को घूम

वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पहुंचना चाहते हैं तो निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन बगहा है, जो देश के कई शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। आप सड़क से भी यहां पहुंच सकते हैं, यानी बाय रोड भी यहां जा सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डे हैं पटना में और कुशीनगर में, जहां से आगे सड़क मार्ग द्वारा ही आपको यात्रा पूरी करनी पड़ेगी, यानी कि कोई बस या टैक्सी आपको लेनी पड़ेगी। बगहा से राष्ट्रीय उद्यान के सभी क्षेत्र जो हैं वहां तक आसानी से पहुंचा जा सकता है।

इसी के साथ अब वक्त हो गया है कि नीतू आपसे इजाजत ले ले, तस्वीर का समय यहीं तक है। उम्मीद करते हैं कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा आपको पसंद आई होगी। तो नीतू चलती है, आप सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। एक और गाना जो अब आप तक पहुंच कर रहा है और मैं उसे आपके लिए छोड़े जा रही हूँ, वो भी रफी साहब की आवाज में है, मेरे हम तो मेरे दोस्त फिल्म से। आप इस गाने का लुत्फ उठाइए, मैं चलती हूँ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले। प्रधानमंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया युवाओं को जोड़ने का अभियान है। उन्होंने कहा कि सरकार स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
0: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेल राष्ट्रीय प्राथमिकता और युवा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के अंतर्गत मेरा युवा भारत ने आयोजित किया। देश भर में इस कार्यक्रम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के दो दो कॉलेजों के युवाओं ने भाग लिया। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
2: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि

0: तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से यह आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हेन्दी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिवशेर खनाल ने बताया कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। भारत ने कल नेपाल के लोगों की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री और आवश्यक दवाइयां भेजी थीं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज हल्की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 77,273 पर और निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 24,158 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said the government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century. He said, from sports universities to modern training centres, an ecosystem is being developed across the country where talent receives support at every stage. Addressing the Khelo India dialogue through video conferencing today, Mr. Modi said sports is not limited merely to winning medals, rather it is a mission to unite India's sporting prowess and youth power in the building of a developed India.
3: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
2: He said every district has the potential to shine on the global sports map. The Prime Minister said he had announced from the ramparts of the Red Fort a big talent hunt to identify kids from 5 to 15 years of age in sports. Speaking on the occasion, Union Minister for Youth Affairs and Sports, Mansukh Mandavia, said under the leadership of Prime Minister Modi, sports has emerged as a national priority and an important instrument of youth empowerment. The program was organized as part of the National Sports Day 2026 celebrations by Mera Yuva Bharat, My Bharat. It was conducted across the country with participation of youth at 2 colleges in every district across states and union territories. Nearly 300 Indian tourists are among thousands who are reportedly missing after a flash flood swept through parts of the Nepal.

0: Hãy
1: कार्यक्रम घर आंगन के सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज आपके साथ हूँ मैं प्रतिभा, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन। और हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के श्रोता हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी कि 819 किलोहर्ट्ज पर। दोस्तों, हर बीतते दिन के साथ हम आपसे मुलाकात करते हैं और आवाज का ये रिश्ता हर दिन गहराता जाता है। बातों मुलाकातों का ये रिश्ता ऐसे ही बरकरार रहे, हमें आपका प्यार स्नेह और साथ ऐसे ही मिलता रहे।

ऐसी हम कामना करते हैं तो कार्यक्रम का करते हैं आगाज। आज के पिटारे में होंगी खूब सारी बातें, खूब सारी जानकारियां और होगा मनोरंजन भी, लेकिन उससे पहले वक्त है आज के प्रश्न का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे पूछते हैं एक प्रश्न, तो आज का प्रश्न जुड़ा है आपकी भागदौड़ भरी जिंदगी से कि आज की भागदौड़ में रिश्तों को मजबूत रखने के लिए सबसे जरूरी क्या है। जी हाँ, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में रिश्तों को मजबूत रखने के लिए सबसे जरूरी क्या है, तो आपको इस प्रश्न का जवाब देना है हमारी मेल आईडी पर जो कि है fmgoldga@gmail.com।

अनुपमा फिल्म से अभी आपने ये सुना, आवाज थी लता मंगेशकर की। और श्रोताओं, सबसे पहले बात करते हैं दिन विशेष की। आज 27 अगस्त को श्री जगन्नाथ मंदिर में आज बलभद्र जन्मो

उत्सव अत्यंत श्रद्धा, वैदिक परंपराओं और उड़िया संस्कृति के साथ मनाया जा रहा है। ये उत्सव भगवान भलभद्र के दिव्य अवतरण को स्मरण कराते हुए भक्तों को शक्ति, साहस और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान बलराम को समर्पित ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है और भगवान बलराम को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई, शक्ति, कृषि और परिश्रम के प्रतीक के रूप में माना जाता है। इस अवसर पर विशेष रूप से हल और कृषि से जुड़े उपकरणों की पूजा की जाती है। तो आज के इस शुभ दिन की आप सभी को मंगल कामना है। और श्रोताओं, आज श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि भी है। ये दिन धार्मिक व सांस्कृतिक रूप से विशेष महत्व रखता है। ये सावन महीने का अंतिम दिन है और पूर्णिमा के दिन शिव और माता पार्वती की पूजा करने से हम सभी जानते हैं कि मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दक्षिण भारत में से नारियली पूर्णिमा और अवनी अवितम के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में से कजरी पूनम या कजरी पूर्णिमा कहा जाता है। श्रावण पूर्णिमा हमें रिश्तों में प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारी को मजबूत करने का संदेश देती है। तो इस पावन अवसर पर अपने संबंधों में स्नेह बनाएं और आज के इस शुभ दिन की भी आपको शुभकामनाएं। और आज श्रोताओं, एक और खास दिन है, वो है वर्ल्ड लेक डे। हर साल 27 अगस्त को यह दिन मनाया जाता है। विश्व झील दिवस का जो मनाने का उद्देश्य है वो झीलों के महत्व, उनके संरक्षण और जल संसाधनों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। झीलें केवल पानी का स्रोत नहीं बल्कि जैव विविधता, भूजल और पर्यावरण के संतुलन में महत्वपूर्ण कड़ी होती हैं। बढ़ता प्रदूषण, कचरा, अतिक्रमण झीलों के अस्तित्व के लिए चुनौती बन रहे हैं और ऐसे में झीलों में कूड़ा ना डालना, जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाना और स्थानीय स्तर पर उनके संरक्षण में सहयोग करना हम सभी की जिम्मेदारी है। तो झीलों को बचाएं, जल बचाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति को सुरक्षित बनाएं।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये प्यारा सा गीत सुना, फिल्म थी झील के उस पार। और दोस्तों, हर शख्स किसी ना किसी हुनर का हुनरमंद होता है, ये हम सभी जानते हैं। यानी कि हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई प्रतिभा या कौशल होता है, और सही दिशा, प्रशिक्षण और नए अवसर उस हुनर के जरिए स्वरोजगार, उद्यमिता के नए रास्ते खोल सकते हैं। आज ऐसे बहुत से हुनरमंद लोग हैं जिन्होंने कड़ी लगन और मेहनत के जरिए ये साबित कर दिखाया कि ऊंचा उड़ने के लिए सिर्फ पंख काफी नहीं, बल्कि हिम्मत, ताकत और विश्वास भी जरूरी है। तो बात करते हैं एक ऐसी महिला की जिन्होंने अपना खाना बनाने के एक छोटे से कौशल को एक नई पहचान देकर अपना स्वयं का खाद्य उद्यम स्थापित किया। मणिपुर की यांगमिला जिमिक, जिनका जीवन संघर्ष की कहानी बयां करता है। एकल मां के रूप में गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए यांगमिला ने स्थानीय खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया, और 2015 में मात्र 500 रुपए के छोटे से निवेश से उन्होंने अपने कौशल का उपयोग करते हुए घर पर ही आंवले की कैंडी और जैविक अचार बनाना शुरू किया। उनके उत्पाद स्थानीय स्तर पर खूब लोकप्रिय हुए। आज उनकी कंपनी 35 से ज्यादा प्रकार के जैविक उत्पाद बेचती है और स्थानीय महिलाओं को रोजगार भी देती है, और 100 से अधिक किसानों से फल प्राप्त करती है। यानी कि उन्होंने किसानों को भी काम देना शुरू कर दिया है, उनकी खेती से उत्पादित होने वाले फलों को अपने व्यवसाय से वो जोड़ रही हैं, ले रही हैं। तो देखा, छोटी सी कोशिश कितने बड़े परिवर्तन लेकर आ सकती है। तो अगर आप में भी किसी तरह का हुनर है तो बस जुट जाइए उस हुनर को नई पहचान देने के लिए, क्योंकि आज अनेक रास्ते हैं आपके हुनर को बुलंदी तक पहुंचाने के लिए।

ये थे भूपेंद्र सिंह और लता मंगेशकर और फिल्म थी सितारा। और श्रोताओं, जो हमने प्रश्न पूछा था उसके जवाब हमारे पास आ गए हैं। सबसे पहले जवाब आया है हमारे पास नवीन भाटिया जी का। वो कहते हैं कि सबसे जरूरी है एक दूसरे को समझना। अगर कभी अपना मूड ऑफ है तो सामने वाले को धैर्य रखना चाहिए, कभी उनका मूड खराब है तो खुद को संयम रखना चाहिए। भाई देखिए, बहुत अच्छी बात है, जिंदगी की गाड़ी ऐसे ही चलती है। रिश्तों में जो ये एडजस्टमेंट है ना, वो बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छी बात कही नवीन जी आपने। और अगला जो जवाब हमारे पास आया है वो योगराज सहगल जी का आया है। वो दिल्ली बुराड़ी से लिख रहे हैं। वो कहते हैं कि भागदौड़ भरी जिंदगी में उनका मानना है कि सबसे ज्यादा रिश्तों को बनाने के लिए उन रिश्तों को समय देना और बातचीत करना ही अहम भूमिका निभाता है। भाई वाकई ही, अगर आप रिश्तों को समय नहीं देते या उनमें संवाद की कहीं कमी रख लेते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं दूरियां बनने लगती है। तो ये बहुत अच्छी और बहुत अहम बात है जो हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। अफरोज शेख जी लिख रहे हैं कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है बड़ों का ध्यान रखना। भाई वाह, और बड़ों का तो ध्यान रखें ही रखें, साथ ही अपना भी ध्यान रखना और उन सबका ध्यान रखना जो आपके अपने लोग हैं, यानी कि आपके जो घर के सदस्य हैं, सबका ध्यान रखना जरूरी हो जाता है रिश्तों को संभालने और सहेजने के लिए। चरणदास जी कहते हैं कि मोबाइल से नहीं, आमने सामने बैठकर बातें करेंगे, प्यार बढ़ेगा, रिश्ते मजबूत होंगे। और जमाना भी देखा है। वो कहते हैं कि पूरी रात रिश्तेदारों के साथ बात करते थे, बस में चढ़ाने आते थे तो आंखों में आंसू आ जाते थे। आज इंसान भौतिक वस्तुओं के पीछे ज्यादा भाग रहा है और अपने अंदर की संवेदनाओं को महसूस करना होगा।

राजू अग्रवाल, केशव दक्ष चौधरी, ये हिसार हरियाणा से लिख रहे हैं। तो देखिए, बात तो सही है ही है, क्योंकि डिजिटल दौर में हम देखते हैं कि हर आदमी अपने हाथ में मोबाइल लेकर बैठा है। तो मोबाइल को थोड़ा सा छोड़कर अपनों के साथ बात करना, संवाद करना बहुत ज़रूरी है। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक टिकाऊ जीवन शैली की। जब हम टिकाऊ जीवन शैली के बारे में सोचते हैं, तो श्रोताओं देखिए, मन में ख्याल आता है कि जीवन में बड़े बदलाव करने होंगे, आदतों को बदलना पड़ेगा या फिर लाइफस्टाइल के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और ये सब सोचकर लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल आपकी हमारी उन छोटी छोटी आदतों से जुड़ा है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकती है। जरूरत है बस एक जिम्मेदारी की, जैसे कमरे से या लिफ्ट से बाहर निकलते समय लाइट फैन को बंद करना ना भूलें। जरूरत नहीं है तो पानी को व्यर्थ ना बहने दें। भाई ये हम सभी जानते हैं, कभी कभी थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं, लेकिन इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। शॉपिंग पर जा रहे हैं तो कपड़े का थैला घर से ही लेकर जाएं। आज भले ही पेपर बैग्स मिलने लगे हैं, पर कपड़े का जो बैग होता है ना, वो वॉशेबल भी होता है और टिकाऊ भी होता है। बात अगर खाने की करें तो खाना खाते समय उतनी ही मात्रा में भोजन लें जितनी वास्तव में आपको जरूरत है, यानी कि आप अपनी प्लेट को भर ना लें, जितनी जरूरत है आप उतना लें, और अगर भूख है तो आप सेकंड फिलिंग ले सकते हैं, क्योंकि एक ही बार ज्यादा लेने से होता है क्या है कि कभी कुछ अच्छा नहीं लगा या पेट भर गया तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उसकी बर्बादी होती है, तो उसका ध्यान रखना है। और बात खरीदारी की करें तो ये भी हमारी टिकाऊ जीवन शैली का एक अहम हिस्सा है। हर चीज केवल इसलिए खरीदना जरूरी नहीं है कि वो नई है, जरूरत के अनुसार खरीदना, टिकाऊ वस्तुओं को प्राथमिकता देना, और जिन चीजों का उपयोग हो सकता है उन्हें तुरंत कचरे में ना डालें, यही तो संसाधनों की बचत करता है। तो भैया, ऐसे में कम उपयोग, दोबारा उपयोग और पुनर्चक्रण जैसी आदतों को शामिल किया जा सकता है। पुरानी बोतल, डिब्बे या कपड़े कई बार उपयोग में आ सकते हैं, इससे कचरा भी कम होगा और अनावश्यक खरीदारी भी। तो आज से ही ऐसे छोटे छोटे कदम उठाएं, अच्छी आदतें अपनाएं और ऐसी जीवन शैली का निर्माण करें जो हमारे लिए भी बेहतर हो और हमारी प्रकृति के लिए भी। ये वाकई एक समझदार तरीका है जीवन को बेहतर।

जमीन आसमान। इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना, आवाज थी लता मंगेशकर की। और जो श्रोता थोड़ा सा लेट जुड़े हैं कार्यक्रम घर आंगन से, उनके लिए मैं प्रश्न आज का जो है एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, और मुझे रहेगा आपके सवालों, इस सवाल पर आपके जवाबों का इंतजार। तो जो आज का जो हमारा प्रश्न है वो है कि आज की भागदौड़ में रिश्तों को मजबूत रखने के लिए सबसे जरूरी क्या है। जी हाँ, आज की भागदौड़ में रिश्तों को मजबूत रखने के लिए सबसे जरूरी क्या है, आपको हमें इसका जवाब देना है fmgoldga@gmail.com पर। और इसी दौरान हमारे पास एक जवाब आ चुका है, वो हमारे को लिख रहे हैं गौरी शंकर जी नांगलोई से। वो कहते हैं कि प्रतिभा बेटा राम राम, अगर इंसान कोशिश करे तो बहुत कुछ बदल सकता है। हमारे समय में इतने साधन नहीं थे, फिर भी जो खुशी मिलती थी वो आज के समय में नहीं है। लोग आपस में मिलकर मन की बात करते थे, शरीर की बीमारियां भी दूर होती थी।

इतनी खुशी मिलती थी। तो शुक्रिया गौरी शंकर जी। और देखिए बात सही भी है कि व्यस्तता इतनी बढ़ गई है ना आज के जीवन में कि समय नहीं है, तो थोड़ा सा हमें भी समझने की जरूरत है, अपने लिए अपनों के लिए वक्त निकालें। बिल्कुल। और अब चलते हैं बचपन की ओर। तो अगर हम बचपन की यादों में जाते हैं ना, तो चिट्ठी, पोस्ट कार्ड, स्पीड पोस्ट जैसे कुछ नाम याद आते हैं, और समय के साथ साथ जो है ना इनकी यादें वो धुंधली पड़ने लगी है, क्योंकि जमाना डिजिटल दौर में जो आप पहुंचाए, अब डिजिटल मैसेज और ईमेल आ गए हैं और हमारा पोस्ट बॉक्स खाली रहने लगा है। अब हम अपना चैट बॉक्स और मैसेज बॉक्स देखने लगे हैं, पर डाक सेवा तो भाई अडिग थी और अडिग रही। समय के साथ साथ हमारी डाक सेवा ने कदम मिलाकर चलना शुरू कर दिया। आज डाकघर की सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की दिशा में भारतीय डाक ने डाक सेवा ऐप को विकसित किया है। इसका उद्देश्य आम नागरिकों को डाकघर से जुड़ी जरूरी जानकारी और कई सेवाएं मोबाइल फोन के माध्यम से उपलब्ध कराना है। ऐप को डाक विभाग के सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी यानी कि CEPT ने विकसित किया है, और डाक सेवा ऐप के जरिए उपभोक्ता अपने डाक, लेख, स्पीड पोस्ट, पंजीकृत पत्र, पार्सल और इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर यानी कि EMO जैसी सेवाओं की स्थिति मोबाइल पर देख सकते हैं, और इसके अलावा नजदीकी डाकघर की जानकारी हासिल करने, पोस्टेज यानी डाक शुल्क की गणना करने और शिकायत दर्ज कर उसकी स्थिति देखने जैसी सुविधाएं भी इस ऐप पर उपलब्ध हैं। ऐप की उपलब्ध सुविधाओं में शिकायत प्रबंधन, बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर और बचत योजनाओं से संबंधित ब्याज कैलकुलेटर भी शामिल है। और सबसे खास बात जानते हैं क्या है, वो ये है कि भाषा अवरोध को दूर करने के लिए जो ये ऐप है वो भाषणी प्लेटफॉर्म के जरिए 23 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। है ना मजेदार बात। तो कुल मिलाकर डाक सेवा ऐप ने डाकघर की कई सूचनात्मक और सेवा संबंधी सुविधाओं को स्मार्टफोन तक पहुंचाने का रास्ता आसान कर दिया है। पार्सल की स्थिति देखने से लेकर नजदीकी डाकघर खोजने, शुल्क का अनुमान लगाने और शिकायत दर्ज करने तक कई काम अब मोबाइल के जरिए किए जा सकते हैं। इससे आम नागरिकों, छात्रों, छोटे कारोबारियों और नियमित डाक उपयोगकर्ताओं को समय बचाने में मदद मिल सकती है। तो अब आप अपना डाकिया खुद बनकर पोस्ट ऑफिस के काम स्वयं अपने मोबाइल फोन के जरिए कर सकते हैं।

आशा भोसले की आवाज में अभी आप ये गीत सुन रहे थे, फिल्म थी आए दिन बहार के। और श्रोताओं, जब हम दिल्ली मेट्रो में चढ़ते हैं तो हम सबसे पहले सुनते हैं कि दिल्ली मेट्रो में आप सभी का स्वागत है। ये लाइन आप सभी और हम सभी मेट्रो के सफर के दौरान सुनते हैं। वाकई दिल्ली मेट्रो का सफर आरामदायक होने के साथ साथ हमारे समय को भी बचाता है। हम सभी आभारी हैं इस सेवा के, जिसने लंबे ट्रैफिक जैम को कम करने की कोशिश की, जिसने हमारी यात्रा को सुविधाजनक बनाया। आज दिल्ली मेट्रो सेवा दुनिया के बेहतरीन नेटवर्क में शामिल है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC के अनुसार 2026 में दिल्ली मेट्रो ने 99.95% ट्रेन पंक्चुअलिटी दर्ज की है। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो में ट्रेन के अपने निर्धारित समय 59 सेकंड से ज्यादा देरी होने पर ही उसे विलंब माना जाता है, जबकि कई अंतर्राष्ट्रीय मेट्रो प्रणालियों में 2 से 5 मिनट की देरी को सामान्य माना जाता है। इस सख्त मानक के बावजूद दिल्ली ने बड़े बड़े देशों की कई बड़ी मेट्रो सेवाओं को पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क अब 416.5 किलोमीटर से अधिक हो चुका है, जिसमें 303 से ज्यादा स्टेशन हैं। व्यस्त कॉरिडोर पर ट्रेनों के बीच का समय घटाकर मात्र 2 मिनट 18 सेकंड कर दिया गया है। इससे लगातार बढ़ रही यात्रियों की संख्या को संभालने में मदद मिल रही है। आज नेटवर्क का लगभग 29% हिस्सा अब अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन यानी ड्राइवरलेस तकनीक से संचालित होता है। श्रोताओं, दिल्ली मेट्रो ने 25 दिसंबर 2002 को शाहदरा से 30,000 के बीच केवल 8.4 किलोमीटर लंबे मार्ग और 6 स्टेशनों के साथ शुरुआत की थी। आज ये भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन चुका है और इसका नेटवर्क 416.5 किलोमीटर, 12 लाइनों और 303 स्टेशनों तक फैल गया है। इसमें 31 इंटरचेंज स्टेशन हैं जो दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं। पहले रोजाना करीब 82,000 यात्री यात्राएं होती थी, वहीं आज औसतन 64.06 लाख यात्री यात्राएं हो रही हैं। समय की पाबंदी, सुरक्षा और आधुनिक तकनीक के दम पर आज दिल्ली मेट्रो ने दुनिया की प्रमुख शहरी रेल सेवा में अपनी अलग पहचान बना ली है। और जानते हैं कि खास बात यह है कि आप भी मेट्रो रेल सेवा की प्रगति का हिस्सा हैं, क्योंकि मेट्रो के

सवेरे वाली गाड़ी। अभी आप इस फिल्म से गीत सुन रहे थे, आवाज थी लता मंगेशकर की। और श्रोताओं, हमारे प्रश्न का जवाब आ चुका है। रतलाम मध्य प्रदेश से भंवर धनगर लिख रहे हैं कि आज की भागती दौड़ती जिंदगी में रिश्तों को मजबूत रखने के लिए सबसे जरूरी है समय, विश्वास और संवाद। हर रिश्ता बड़ी बड़ी चीजों से नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों से मजबूत होता है। एक दूसरे की बात ध्यान से सुनना, गलती होने पर माफ करना, मुश्किल समय में साथ खड़े रहना और बिना मतलब के हाल पूछ लेना। भाई वाकई बहुत सही बात कही आपने। और सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी सोनीपत से लिख रहे हैं कि भागदौड़ भरी जिंदगी में रिश्ते बनाए रखने का मूल मंत्र है कि किसी से कड़वा नहीं बोलो। भाई रिश्ते कड़वाहट अगर होती है तो कड़वा बोलो तो कड़वाहट आ जाती है रिश्तों में, तो उसका ध्यान रखना। और सबसे बड़ी सीख वो ये कहते हैं कि अपनों से हार जाना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। भाई बहुत अच्छी बात कही आपने।

श्रोताओं, घड़ी ने मुझे इशारा कर दिया है कि मैं आपसे लूं इजाजत, लेकिन आपका साथ हमारे लिए हौसला है और हमारे लिए सकारात्मकता लेकर आता है। तो इस वादे के साथ फिर किसी और दिन इसी समय

अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
0: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेल राष्ट्रीय प्राथमिकता और युवा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। श्री मांडविया ने कहा कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम खेलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ा रहा है तथा सभी खिलाड़ियों को समान अवसर देने में मदद करेगा। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत ने आयोजित किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में 2030 राष्ट्रमंडल खेल और प्रस्तावित 2036 ओलंपिक खेलों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। श्री शाह एक दिन के गुजरात दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमरेली जिले में दुधाला के पंचगंगा तीर्थ में नवनिर्मित हेतनी हवेली झील का उद्घाटन करेंगे। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया है कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की है और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। विदेश राज्य

0: श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद है और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। नेपाल में बाढ़ के बाद किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बिहार में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की 9 टीम और उत्तर प्रदेश में 1 टीम तैनात की गई है। नई दिल्ली में आज बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने संवाददाताओं को बताया कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास कुशीनगर क्षेत्र में एनडीआरएफ की 1 टीम तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि बिहार में अभी तक बाढ़ का व्यापक असर नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और इस्पात विनिर्माण में भारत जापान साझेदारी बढ़ाने के लिए निवेशकों से चर्चा की। ओसाका में आरओएचएम के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कात्सुमी अजुमा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ उन्होंने बैठक की। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट में भारत मजबूत स्थिति में बना हुआ है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 127 रन की बढ़त बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 164 अंक गिरकर 77,309 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said the government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century. Addressing the Khelo India dialogue through video conferencing today, Mr. Modi said, from sports universities to modern training centres, an ecosystem is being developed across the country where talent receives support at every stage. He said that sports is not limited merely to winning medals.
2: When I talk about sports, तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूँ, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है। खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: Speaking on the occasion, Union Minister for Youth Affairs and Sports Mansukh Mandavia said, under the leadership of Prime Minister Modi, sports has emerged as a national priority and an important instrument of youth empowerment. The Khelo India dialogue provided a direct channel for young people to engage with the country's sporting ambitions while ensuring that their ideas and perspectives become part of the continuing conversation on India's youth and sports ecosystem. The death toll from the flash flood that swept through parts of the Nepal-Tibet border has reached 162. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal has said nearly 300 Indians are among thousands reported missing in the floods. Originating in Tibet, the flood devastated several towns and villages, washing away critical bridges and crippling a dozen hydropower projects. India has dispatched the second tranche of 37.5 tons of humanitarian assistance and disaster relief material, medicines and food packets for Nepal. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar informed that the second flight has taken off carrying relief materials. India had dispatched 10 tons of humanitarian assistance and disaster relief and essential medicines yesterday. Earlier, Prime Minister Narendra Modi spoke to his Nepalese counterpart, Balendra Shah, and assured him of all possible humanitarian assistance. The National Disaster Response Force, NDRF, today said the devastating flash floods in Nepal have so far had no adverse impact on the border areas of Bihar and Uttar Pradesh. However, the situation is being continuously monitored in coordination with the two state governments. NDRF Inspector General

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप, कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक गायक की बात करने वाली हूं, एक ऐसी आवाज जिन्हें क्रिकेट के मैदान पर सुना जाता था ताकि खिलाड़ी अच्छा खेले। हाँ चलो पहले आवाज सुनाती हूँ आपको, उसके बाद आप अंदाजा लगा ही लेंगे किन की बात होने वाली है कलाकार बेमिसाल में।

मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप इन गानों से बाहर नहीं आना चाहेंगे आज। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत गाना जिसे आवाज़ दी है मुकेश ने, आपने बिल्कुल अभी सुन लिया, और इस गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था उन्हें, और कितनी तारीफ की जाए उनकी आवाज़ की, बहुत ज़्यादा तारीफ। मुझे लगता है कि शब्द कम पड़ जाएंगे, मुकेश की आवाज़ कुछ ऐसी है। दिल्ली में जन्मे थे मुकेश 22 जुलाई 1923 को। उनका पूरा नाम था मुकेश चंद माथुर। मुकेश दिखने में भी काफ़ी सुंदर थे। बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि मुकेश कई फिल्मों में एक्टिंग भी कर चुके हैं, लेकिन उनके जो फिल्मों तक पहुंचने की कहानी है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट। थोड़ा सा बताती हूँ आपको, उसके बाद पूरी कहानी सुनाऊंगी। उनकी जो बहन है, उनकी शादी में उनके मुंबई जाने की जो राह है वो बनी थी, कैसे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आनंद फिल्म का ये गाना, कहीं ना जाना।

आनंद फिल्म का ये गाना है जो मुकेश की आवाज में आपने सुना। संगीतकार हैं सलिल चौधरी। दोस्तों, बातें हो रही थी मुकेश के करियर के बारे में, कैसे मुकेश ने एक शादी से रास्ता ढूंढा अपने मुंबई जाने का। असल में रास्ता उन्होंने नहीं ढूंढा, बल्कि उनके लिए किसी और ने ढूंढा। कहानी कुछ इस तरह से है। मुकेश दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। मंदिर मार्ग एक जगह है दिल्ली में, जो लोग भी दिल्ली में रहते हैं उन्हें पता होगा। ये यहां पर मुकेश का स्कूल था। उनके क्लासमेट थे संगीतकार रोशन। दोस्तों, मुकेश उस वक्त स्कूल में भी गायकी वाले प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया करते थे, तो शौक वहीं से शुरू हो गया। दसवीं तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने पीडब्ल्यूडी में नौकरी ज्वाइन कर ली और नौकरी में रहते हुए अपनी गायकी के ख्वाब पूरे करने में लग गए। वो रिकॉर्डिंग किया करते और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी सीखने लगे। मुकेश का जो जीवन है वो तब बदला जब उनकी बहन की शादी थी और वहां उनके दूर के रिश्तेदार उस जमाने के बहुत ही मशहूर कलाकार मोतीलाल आए। मुकेश ने फेरों के बीच में जो वक्त होता है ना, काफी लंबा दौर चलता है फेरों का, तो बीच में जो समय मिलता है उसमें गाना गाया। गाना मोतीलाल ने सुना और मुकेश को मुंबई आने का न्योता दिया। मुकेश वहां पहुंचे तो मोतीलाल ने उनके लिए पंडित जगन्नाथ की म्यूजिक क्लासेस का इंतजाम किया, क्योंकि मुकेश ने सिंगिंग के लिए कोई खास ट्रेनिंग नहीं ली थी। लेकिन जाते ही उनको काम नहीं मिला। उस बीच में कुछ और भी किया उन्होंने, क्या किया बताऊंगी आपको। उससे पहले पत्थर की सनम फिल्म का ये गाना, आपको कहीं नहीं है जाना।

0: मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में पत्थर के सनम फिल्म का ये गाना आपने सुन लिया है बिल्कुल अभी। और दोस्तों, मुकेश के बारे में एक ऐसी बात जो शायद आप ना जानते हो बताऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर चलते हैं। आपको यहीं रहना है मेरे साथ। हाँ,
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से।

0: विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज बातें हो रही हैं मुकेश की।

बहुत ही मशहूर फिल्म रही है कटी पतंग। इसके शायद ही कोई इसका कोई शायद ही ऐसा गाना हो जो आपको पसंद ना हो, और ये गाना तो बहुत ही खास है। मुकेश की आवाज में न जाने क्या जादू है उनकी आवाज में। अक्सर सैड सॉन्ग सुनने के बाद हम सैड ही हो जाते हैं, लेकिन मुकेश की जो आवाज है वो एक फ्रेशनेस लेकर आती है। ऐसा लगता है कि उनके गाने सुनते सुनते हम अपने गम को भूल ही जाते हैं और एक अच्छी सी मुस्कान जो है ना वो चेहरे पर आ जाती है। मैं तो खास तौर से अगर मुझे कुछ सैड फील होता है तो मुकेश के गाने या उनके जो हैप्पी वाले गाने हैं वो भी सुनती हूँ तो भी अच्छा लगता है। तो बातें हो रही थी मुकेश की फिल्म इंडस्ट्री में आने की। म्यूजिक की ट्रेनिंग के दौरान मुकेश को एक्टिंग के कई ऑफर मिले, क्योंकि वो दिखने में काफी खूबसूरत थे। बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि मुकेश ने एक्टिंग भी की है। जी हाँ, उनका एक्टिंग और सिंगिंग करियर एक साथ ही शुरू हुआ। साल 1941 में फिल्म निर्दोष में उन्होंने अभिनय किया और गाने भी गाए। उनके पहले गीत के बोल थे दिल ही बुझा हुआ हो तो। मुकेश का पहला हिट गाना था दिल जलता है तो जलने दो, जो उन्होंने मोतीलाल के साथ गाया था फिल्म पहली नजर में के लिए। लेकिन फिलहाल जो मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ वो गाना बहुत ज़्यादा डिमांड में है। आप लोग बहुत मैसेजेस करते हैं जिस दिन भी मुकेश का बर्थडे होता है कि ये गाना सुनाइए, तो संगम फिल्म का ये गाना है।

संगम फिल्म का ये गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में, संगीतकार शंकर जय किशन ने इस गाने को तैयार किया था। दोस्तों, मुकेश के करियर में संगीतकार नौशाद का भी बहुत ही अहम रोल माना जाता है। मुकेश केएल सहगल साहब के बहुत बड़े फैन थे, तो कुछ असर उनका शुरुआती दिनों में, सहगल साहब का जो असर है वो मुकेश की आवाज में सुनाई देता था। अक्सर तो धोखा भी हो जाता था कि मुकेश है या फिर सहगल साहब है। मुकेश को जब नौशाद साहब के साथ काम करने का मौका मिला तो नौशाद साहब ने उन्हें अपनी खुद की आवाज से रूबरू करवाया, और उस दौर में जब नौशाद ने अपनी खुद की आवाज में गाना शुरू किया तो वो बिल्कुल अलग थी। इस बदलाव की वजह से मुकेश यूं कहिए कि एक यूनिक आवाज बनकर उभरे। तो एक बहुत ही खूबसूरत गाना दोनों के साथ के नाम, नौशाद और मुकेश के नाम।

सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत गाना जिसका संगीत दिया था नौशाद साहब ने, फिल्म का नाम है साथ ही आपने सुन लिया है बिल्कुल अभी। और दोस्तों मुकेश और शंकर जयकिशन की जोड़ी

बहुत ही खूब रही। मुकेश ने सबसे ज्यादा लगभग 133 गीत शंकर जयकिशन के साथ ही गाए हैं। इसके बाद कल्याण जी आनंद जी के साथ 99 गाने रिकॉर्ड किए। शंकर जयकिशन ने मुकेश को हर तरह के गाने दिए, चाहे दर्द भरे हों या रोमांटिक हों। मुकेश को 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले बेस्ट सिंगर कैटेगरी में, जिनमें से 3 जो गाने हैं वो शंकर जयकिशन के साथ ही रिकॉर्ड हुए। एक बहुत ही बेहतरीन बेमिसाल साथ रहा है मुकेश और शंकर जयकिशन का।

शोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदा

मीडियम एफएक्स 97.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज और साथ ही एफएम फ्रीक्वेंसी 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। आज सन 2026 अगस्त महीने की दिनांक 27 और शुभ दिन है गुरुवार। श्रोताओं, आकाशवाणी के तवंग केंद्र से हमारा आज का प्रसारण आरंभ होता है। अब से लेकर प्रसारण के अंत तक यानी रात्रि

नवश्कर 16 मिनट तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी कक्ष में उपस्थित कार्यक्रम सहायक श्रीमती संगीत सुमो, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री हेमंता सुरगिरी, श्री कामे यंगफो और श्री तानिंग ताको, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अमोल कुमार दास, मोनपा में उद्घोषक श्री तुप्तन ताशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका यशी वंगमू।

니게비안 다시 아몰 구마르다스 몬파미 옷고식 시 톱던 다시 다다 안니 세그르미오케 사드 मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका यशी वंगमू। कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं।

मीडियम एफ के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तावंग केंद्र है। श्रोतम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अब से कुछ ही पलों में यानी दोपहर 2 बजे आप सुन सकेंगे मीटी न्यूज के तहत अंग्रेजी में समाचार। तत्पश्चात दोपहर 2:15 पर सुनिएगा दोपहर समाचार के अंतर्गत हिंदी में समाचार। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: 3-0 yesterday. The two Indian players will now face each other in the semi-final this evening. Benchmark domestic equity indices were trading with modest losses in the afternoon session today. The Sensex was down 143 points to 77,330, while the Nifty dropped 36 points to 24,171 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century, addresses Khelo India dialogue through video conferencing. 300 Indians among thousands missing in massive flash flood in Nepal, over 160 dead. India sends second tranche of relief materials. NDRF teams deployed in Bihar and Uttar Pradesh to respond to any flood-like situation. Forecast of heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and northeastern states till Saturday. US President Donald Trump says no fixed timeline for Iran to return to negotiating table. And in men's cricket, Sri Lanka extends their lead over India to 151 runs in second innings of the second and final test at Colombo. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत सहित 1000 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए बातचीत की कोई निश्चित समय सीमा नहीं। और कोलंबो में दूसरे तथा अंतिम टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 151 रन की बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल ढांचा विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले।
2: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
2: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है। खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की थी।
2: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है, और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग

0: देनी होगी।
1: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों ने लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया है।
2: भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना टैलेंट साबित करने का समान मंच मिले।
1: ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत माय भारत ने आयोजित किया था। देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के दो दो कॉलेजों के युवाओं ने इसमें भाग लिया। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में मजबूत खेल व्यवस्था और बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। गुजरात में गांधीनगर के पालज स्थित IIT में आयोजित खेलो इंडिया संवाद से अलग मीडिया से बातचीत में डॉ. मांडविया ने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल खेल अकादमियों की स्थापना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खेल सुविधाओं को मजबूत करने में किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत को अपनी खेल परंपराओं को एक जीवंत खेल संस्कृति में विकसित करना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली के हिंदू कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद में हिस्सा लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश एक मजबूत खेल तंत्र विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहा है।
3: इंटरनेशनल लेवल में हमारा मेडल्स बढ़ रहे हैं। पहले तो हम एक मुश्किल से दो मेडल मिलते थे, अब तो हम हर कंपटीशन, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, अब तो मल्टीपल मेडल्स जीतते हैं इंडियन प्लेयर्स। ये तो बहुत फख्र की बात है।
1: कश्मीर के सभी 10 जिलों के हजारों छात्रों, खिलाड़ियों और अन्य लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल माध्यम से आयोजित खेलो इंडिया संवाद में भाग लिया। प्रतिभागियों ने युवा पीढ़ी को खेल अपनाने और खेल में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की। चंडीगढ़ के 51 शिक्षण संस्थानों के हजारों विद्यार्थियों और राष्ट्रीय खेल सेवा स्वयं सेवकों ने आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पठानकोट स्थित आर्य महिला महाविद्यालय की छात्रा शिव्या ने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश हमेशा युवाओं को विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित रूप से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अहमदाबाद के सर्किट हाउस एनेक्सी में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृहमंत्री गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से टी सीरीज टैंकों के ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस परियोजना से रक्षा उपकरणों के रखरखाव और उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पन बिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया है। एक रिपोर्ट।
4: नेपाल में आई इस भीषण त्रासदी का कारण भूकंप के झटकों से ग्लेशियर फट जाने को माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इस बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है +9779851316807 और +9779701075000। विश्व बैंक ने भी प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। इसके अलावा

0: भाजपा नेपाल में बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी है। डॉ जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव और काठमांडू और पेचिंग में भारत के राजदूतों के साथ नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, पर्यटन संचालकों और परियोजना अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार राहत सहायता प्रदान करने के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद है और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कहा है कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि दोनों राज्य सरकारों के समन्वय से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की 20 टीम तैनात की गई है, जिनमें से 9 बिहार में और 11 उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बल की एक टीम तैनात की गई है।
2: यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहां पर डाइवर्ट कर दी गई थी। एक जो सीडब्ल्यूसी का भी इनपुट था कि उसका इंपैक्ट वाल्मीकि नगर में बैरेज है गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फील्ड में अभी तक फ्लड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज एनडीआरएफ की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में, और अभी तक हम इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं।
1: इस बीच मौसम विभाग ने शनिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। वहीं शनिवार और रविवार को ओडिशा के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया कि प्याज को 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नासिक से रवाना हो चुकी है और लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आज देर शाम या कल सुबह तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसके पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर अपने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जारी न करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि डीए अभी तक जारी नहीं होने के कारण 3 लाख से अधिक राज्य सरकार के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए वार्ता फिर शुरू करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत फिर से शुरू करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका बड़ी बढ़त हासिल कर रहा है। उन्होंने ईरान की आर्थिक मुश्किलों का भी उल्लेख किया। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी आज ईरान पहुंचेंगे। वे ईरानी अधिकारियों से

0: मुलाकात कर तनाव कम करने और बातचीत के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत मजबूत स्थिति में बना हुआ है। श्रीलंका ने चायकाल तक दूसरी पारी में 155 रन की बढ़त बना ली है। इससे पहले भारत ने श्रीलंका को उनकी पहली पारी में 290 रन पर ऑल आउट करके फॉलो ऑन दिया है। दो मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 143 अंक गिरकर 77,330 जबकि निफ्टी 36 अंक की गिरावट के साथ 24,171 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत 1,000 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और कोलंबो में दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 155 रन की बढ़त बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित अंग्रेजी में समाचार, तत्पश्चात हिंदी में समाचार। आपके सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं समय दोपहर के 2:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। इसके अंतर्गत आइए सुनते हैं देवशीष दास गुप्ता के स्वर में चंद हिंदी भक्ति गीत। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, भी आपने सुना देवशीष दास गुप्ता के स्वर में चंद हिंदी भक्ति गीत। इन्हीं भक्ति गीतों के साथ ही दैनिक कार्यक्रम वंदना वी पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं, समय दोपहर के 3 बजे हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इसके अंतर्गत आइए आनंद लेते हैं लता मंगेशकर के आवाज में चंद बांग्ला फिल्मी नगमे। तो लीजिए पेशे कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

0: श्रोता भी फान ले रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में चंद बांग्ला फिल्मी नगमे। श्रोता के साथ ही अलग अलग प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संकेत अभी पर समाप्त हुआ। मीडियो में आपके मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए है। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम महिला मंच। कार्यक्रम महिला मंच में आइए सुनते हैं ओएससी यानी वन स्टॉप सेंटर तवांग के केस वर्कर एडवोकेट सोनम संगमू से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और सेक्सुअल हैरेसमेंट इन वर्कप्लेस विषयों पर हुई भेंट वार्ता। उनसे भेंट करता है दर्जी रमा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित हमारे साप्ताहिक महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला मंच में आप सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हमारे साथ आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में उपस्थित है वन स्टॉप सेंटर तवांग के केस वर्कर एडवोकेट सोनम संगमू जी। तो सोनम जी, आपका सबसे पहले हमारे आज के इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करती हूं।
2: आपको भी नमस्कार
1: जी। तो श्रोताओं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे साथ आज के विशेष मेहमान है एडवोकेट सोनम संगमू, तो जाहिर सी बात है कि आज हम अधिनियमों पर ही चर्चा करेंगे और कार्यक्रम का नाम ही कार्यक्रम महिला मंच है, तो इसमें हम महिलाएं एवं बच्चों से जुड़े हुए कई सारे अधिनियमों पर बात करेंगे। तो सनम जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आज के इस कार्यक्रम में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 या घरेलू हिंसा, आप हमें बताइए कि घरेलू हिंसा किसे कहते हैं और घरेलू हिंसा कितने तरह के होते हैं?
2: जी शुक्रिया। घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस हम उसे कहते हैं जो हिंसा घर के चार दीवारों के अंदर होता है ना। एक छत के नीचे में जितने भी आदमी रहते हैं, जैसे कि एक महिला एक दूसरे घर में शादी करके जाते हैं तो उसका पति का परिवार हो गया, या फिर वो अपने घर में जो अपने माँ बाप भाई बहन या फिर ज्वाइंट फैमिली है तो अंकल आंटी जिसके साथ भी रहते हैं, तो मतलब एक घर के अंदर में जो हिंसा होता है उसे हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं या घरेलू हिंसा कहते हैं। और घरेलू हिंसा के हमारे मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर में 5 टाइप्स दिया गया है, 5 टाइप्स। तो पहला है फिजिकल एब्यूज, दूसरा है इमोशनल एब्यूज, तीसरा है सोशल एब्यूज, चौथा है सेक्सुअल एब्यूज और लास्ट इकोनॉमिक एब्यूज। तो मैं इसको थोड़ा आपको ब्रीफ में बताना चाहूंगी। फिजिकल एब्यूज हम किसे कहते हैं? जैसे नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि मतलब फिजिकल मतलब आपको मारना पीटना, उसको हम फिजिकल एब्यूज कहते हैं। और वो दिखाई भी देता है अगर किसी के साथ फिजिकल एब्यूज हुआ है तो। मगर जब हम इमोशनल एब्यूज की बात करते हैं तो वो किसी को दिखाई नहीं देता है, अंदर ही अंदर विक्टिम को खाया जाता है ना, तो वो दूसरे टाइप होता है। फिर आता है आपका सोशल एब्यूज, मतलब मेनलैंड इंडिया में कई कई जगह पर जो बहुत ही अंदर रिमोट एरिया है वहां पर अभी तक भी ऐसे औरतें हैं जिसको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है और किसी से मिलने नहीं दिया जाता है, तो वो सोशल एब्यूज के अंदर आता है। उसके बाद आता है आपका सेक्सुअल एब्यूज ना, तो हमारे इंडिया में मैरिटल रेप को अभी तक क्राइम नहीं माना जाता है, तो अगर कोई हस्बैंड कोई किसी वाइफ को मैरिटल रेप करता है तो हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर में उसको सेक्सुअल एब्यूज के अंदर में बुक कर सकते हैं। लास्ट आता है आपका इकोनॉमिक एब्यूज। इकोनॉमिक एब्यूज मतलब जिसे मैंने आपको कहा मेनलैंड इंडिया में कई सारी जगह है जहाँ पर अभी तक औरतों को अपना बैंक अकाउंट भी खोलने नहीं दिया गया है
1: जी,
2: तो
1: जी।
2: इस तरह का मतलब सिचुएशंस है और उनको खर्चा पानी नहीं दिया जाता है, तो ये सब इकोनॉमिक एब्यूज के अंदर में आता है।

0: तो डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा में केवल शारीरिक हिंसा ही नहीं आते हैं, बल्कि और भी बहुत सारे हिंसाएं आते हैं, जैसे यौन हिंसा, भावनात्मक हिंसा या आर्थिक हिंसा, या कई तरह के और भी हिंसाएं हो सकते हैं। तो अगर किसी के साथ अगर ऐसी घटना या ऐसी हिंसा होते हैं, कहां जाकर शिकायत दर्ज करनी चाहिए?
1: जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी के साथ भी इस टाइप के डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो वो अपने अपने जो पास के पुलिस स्टेशन है वहां जाके अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट में वन स्टॉप सेंटर तवांग है, वहां जाके वो डायरेक्टली आके अपना कंप्लेन कर सकते हैं। और जब वो कंप्लेन करते हैं तो हम जब वो वन स्टॉप सेंटर में आते हैं तो फर्स्ट हम उनका डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंगली, उसके बाद में हम उनको जेएमएफसी कोर्ट में ट्रांसफर कर देते हैं, वहां जाके डीएलएसए की मदद से उनको आगे की कार्रवाइयां किया जाता है।
0: क्योंकि हमारे समाज में लगभग शारीरिक रूप से जो हिंसा हुआ है उसी को ही सच माना जाता है, लेकिन अब सरकार ने हमें सुविधाएं दे रखी हैं कि किसी भी तरह के हिंसा आपके साथ अगर होते हैं तो आप आकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो अगर किसी महिला के साथ ऐसी ही घटना घटती है, अगर वो आकर आपके पास शिकायत दर्ज भी करते हैं तो सरकार की ओर से और उस पीड़ित महिला को क्या क्या रिलीफ मिलते हैं?
1: जी, जैसे मैंने आपको बताया, जब हम अपने DIR को फॉरवर्ड करते हैं जेएमएफसी कोर्ट में, तो वहाँ पर जो भी जो लीगल एड क्लिनिक में एडवोकेट है वो उनको मदद करते हैं। तो उसके बाद में अकॉर्डिंगली, मतलब उनका जो कितना सीवियर उनके साथ में वायलेंस हुआ है उसके अकॉर्डिंग में उनको रिलीफ दिया जाता है। तो फर्स्ट आपको रिलीफ में आता है प्रोटेक्शन ऑर्डर, जिसमें जो औरतें होते हैं, विक्टिम होते हैं, उनके जो एक्यूज होते हैं या रेस्पोंडेंट होते हैं उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया जाता है। तो वहां पर उनको वो फिजिकल वायलेंस या किसी भी तरह का जो फिजिकल वायलेंस या इकोनॉमिक वायलेंस जो भी, उसको रोक दिया जाता है। फिर सेकेंड आता है आपका रेसिडेंस ऑर्डर। रेसिडेंस ऑर्डर में क्या होता है, आपका एक महिला को जब वो घर से निकाल दिया जाता है, उसका हस्बैंड या किसी भी
0: कोई भी सदस्य घर के,
1: घर के सदस्य के द्वारा, तो वो रेसिडेंस ऑर्डर की मांग कर सकता है।
0: अच्छा।
1: फिर आता है आपका मॉनेटरी रिलीफ। वहाँ पर अगर उनके साथ में मतलब मंथली मेंटेनेंस नहीं देता है या फिर इकोनॉमिक वायलेंस हो रहा है तो मेंटेनेंस के लिए वो प्रे कर सकती है। फिर कस्टडी ऑर्डर तो मेनली बच्चों के लिए होता है, अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ या कोई भी जैसे किसी भी महिला के बच्चों को लेने के लिए करता है तो वो कस्टडी ऑर्डर के लिए मांग कर सकता है। और लास्ट है आपका कंपनसेशन ऑर्डर। तो इस एक्ट के अंदर में पीड़ित महिलाओं को कंपनसेशन भी दिया जाता है, जो कि होता है फिजिकल वायलेंस या इमोशनल वायलेंस के लिए दिया जाता है।
0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट, या हम जिसे पोश एक्ट 2013 भी कहते हैं, तो इसके बारे में मैं और हमारे श्रोताएं जानना चाहेंगे कि पोश एक्ट किसे कहते हैं, इसके अंदर क्या जो ऑफिस में काम करते हैं वही महिलाएं आते हैं, या फिर घर में जो काम करते हैं, या घर में काम ही नहीं बल्कि किसी के घर में रहते भी है कोई, जब कोई शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर में आते हैं तो उनके घर गांव में होते हैं, तो किसी रिश्तेदार के घर पर अगर वो रहती हैं तो उनके साथ भी अगर कुछ ऐसा जो हैरेसमेंट होते हैं तो क्या उन पर भी ये लागू होते हैं?
1: जी, शुक्रिया। फर्स्ट मैं पोश एक्ट का फुल फॉर्म आपको बताना चाहूंगी, POSH, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। तो यहाँ पर भले ही वर्क प्लेस सिर्फ लिखा है, ये एक्ट जो है जैसे आपने मुझे पूछा डोमेस्टिक हेल्प के लिए लागू होता है कि नहीं, बिल्कुल ये एक्ट जो है डोमेस्टिक हेल्प के लिए लागू होता है। और जो बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति जो प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, उनके लिए ये लागू होता है।
0: जैसे कि किसी के साथ ऐसी हिंसा या कोई हैरेसमेंट होते हैं तो अगर वो किसी को शिकायत दर्ज करना चाहे भी तो थोड़ी सी खुलकर नहीं बोल सकते हैं, तो अगर शिकायत दर्ज करना चाहे तो किस तरह से करेंगे?
1: तो इस एक्ट के अंदर में ये भी कहा गया है कि किसी भी ऑफिसेस ना, किसी ऑफिसेस या फिर वर्क प्लेस में जहाँ पर 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हो तो वहाँ पर मैंडेटरी है कि एक इंटरनल कंप्लेन कमिटी बनाना है। तो उस कमिटी में आपका चार मेंबर होना है और उस चार में से मैक्सिमम नंबर जो है, मतलब 50% से ज्यादा मेंबर जो होना है विमेन होना है, जो विमेन रिलेटेड वर्क करता है, जो एनजीओस में है उनको वहां पर अपॉइंट करना है, और जो जो इंटरनल कमिटी में है, इंटरनल कंप्लेन कमिटी में है, उनका नाम अपने अपने ऑफिस के नोटिस बोर्ड में उनको डिस्प्ले करना है, ताकि जो एम्प्लॉयज है उनको ये नॉलेज हो कि अगर उनके साथ में अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हो तो वो किसके पास जाके कंप्लेन

0: करना है, क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो ऑफिसेस में होता है तो उनका उनका जो कंप्लेन है फर्स्ट आपको आईसी मतलब इंटरनल कमिटी में जाके लॉन्च करना पड़ता है। फर्स्ट ये इंटरनल कंप्लेन कमिटी हुआ करता था, लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट इन 2016 इसको सिर्फ इंटरनल कमिटी के नाम से जाना जाता है।
1: अच्छा।
0: क्योंकि ये कमिटी जो है सिर्फ कंप्लेन तक ही सीमित नहीं है, इनका पावर इससे ज्यादा है, इसलिए अभी इनको हम इंटरनल कमिटी के नाम से जानते हैं। और अगर 10 से कम वाले जो ऑफिसेस है वो अगर कंप्लेन करना चाहते हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक वाइज में आपका लोकल कमिटी होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको अप्रोच करके वो अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं।
1: जी जी सुनम जी, क्योंकि मैं हर बार ये कहती हूँ कि हम बहुत ही खुशनसीब लोग हैं, हमारे यहाँ पर ऐसी चीजें बहुत ही कम ना के बराबर होते हैं, फिर भी इन सब चीजों के बारे में जानकारी होना हमारे कर्तव्य है। और हर ऑफिस में चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, वहाँ पर एक इंटरनल कमिटी होना बहुत ही जरूरी है ना, क्योंकि किसी भी महिला के साथ अगर ऐसी हिंसा होते हैं, हैरेसमेंट होते हैं, तो वो सीधे जाकर अपनी शिकायत कर सके। और मैंने ये भी सुना कि शी बुक्स पोर्टल नामक एक वेबसाइट है, तो इस बारे में आप हमें बताएं।
0: आजकल ऐसा होता है कि लोग कंप्लेन करने से बाहर आने से उनको शाई फील होता है, घबराहट फील होता है, तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया है ना, एक पोर्टल लॉन्च किया है, तो वहाँ में जो पीड़ित महिलाएं हैं जो सेक्सुअल हैरेसमेंट से रहे अपने ऑफिसेस में, वो डायरेक्टली ऑनलाइन भी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। shebox.wcd.gov.in यहाँ पर जाके वो डायरेक्टली अपना कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। तो इसके अंदर से जो भी उनका कंसर्न आईसीसी है या एलसी है, लोकल कमेटी है या इंटरनल कमेटी है, वो अपने कंप्लेन को टिकअप कर लेंगे।
1: जी जी, मतलब अगर किसी के साथ ऐसी हैरेसमेंट होते हैं तो वो बिना किसी दूसरों को बताए ही अपने लैपटॉप से या अपने ही कंप्यूटर से वो इस पोर्टल को टाइप करते हुए अपनी शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं ना। और सुनम जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट किसे कहते हैं और यह अधिनियम कितनी उम्र तक के बच्चों के लिए लागू होते हैं।
0: जी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो है बच्चों के लिए, ये एक एक्ट है जो 18 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनके लिए ये एक्ट बनाया गया है। आपने निर्भया केस तो जरूर सुना होगा, जो घटना हुआ था निर्भया केस, तो उसमें आपको जानकारी होगा कि वहाँ पे एक एक्यूज जो है वो जुवेनाइल था, जिसके होते उस सीवियर पनिशमेंट इतना नहीं मिला था, जिसके वजह से भी इस एक्ट को थोड़ा सा अमेंडमेंट करना पड़ा। तो उस केस के बाद से अब जो बच्चे हैं, जो 16 टू 18 इयर्स के बच्चे हैं, अगर वो हीनेस क्राइम करता है, हीनेस क्राइम मतलब जो 7 इयर्स से ज्यादा पनिशमेंट होता है जिसमें, अगर वो ऐसा क्राइम करता है तो उनको भी एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो जैसे आपने हमको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में पूछा है, तो नॉर्मली ये बच्चों के लिए ही है, बच्चों के लिए है। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर में दो तरह का बच्चा आता है, एक है आपका CNCP और दूसरा है CCL। CNCP मतलब चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, एंड CCL मतलब चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ।
1: तो चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ या फिर चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, इन दोनों में फर्क क्या है, और अगर किसी बच्चे से अपराध हो जाते हैं तो उन पर कार्रवाई कौन करेंगे?
0: CNCP जैसे कि चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, और CCL मतलब चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, मतलब जो 18 से नीचे बच्चे हैं वो अगर कोई क्राइम करता है तो उनको कहाँ पर, हम नॉर्मल कोर्ट में तो उनको हम लेके नहीं जाएंगे, तो उनको हम लोग डील करते हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जो इस एक्ट के अंदर में ही दिया गया है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो चाइल्ड फ्रेंडली होता है, नॉर्मल कोर्ट की तरह नहीं होता है। तो उसमें 3 मेंबर होता है, एक होता है प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट, जो हमेशा अब वो डिस्ट्रिक्ट जो हमारा JMFC मैम होता है यहाँ का, या सर होता है, वही प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट होता है। फिर जो 2 बाकी मेंबर है वो किसी भी एनजीओ का मेंबर हो सकता है, एडवोकेट्स हो सकता है, या फिर सोशल वर्कर हो सकता है। तो अगर कोई बच्चा क्राइम करता है तो उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर में देखा जाता है। चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन जो बच्चे होते हैं उनको जो है केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत होते हैं, जो डेस्टिट्यूट होते हैं, जिसका माँ बाप ने उसको अबेंडन कर दिया होते हुए भी, ऐसे तरह के बच्चे ना, तो उनको इसी एक्ट के अंदर में CWC ना, जैसे GGB दिया है, CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी करके होता है, जहाँ पर 1 चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर होते हैं, वो लोग उनको देखभाल करते हैं। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका माँ बाप होते हुए भी उसको नहीं देख रहा है, नहीं देख पा रहा है, या फिर कोई बच्चा का कुछ आता पता नहीं है ना, और जो कोई बहुत ही पुअर फैमिली से या फिर ऐसे बिलोंग करता है, तो उनको CWC टेक केयर करते हैं।
1: जी, और जब हम बच्चों से संबंधित चर्चा कर ही रहे हैं तो मैं साथ में ये भी जानूंगी कि

0: राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 या शिक्षा का अधिकार भी कहते हैं, तो इसके बारे में हमें बताइए आप
1: जी। राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसमें क्या होता है, आपका जो 6 to 14 इयर्स का बच्चा होता है उसको कंपलसरी और फ्री एजुकेशन देने का बात करता है ये एक्ट। किसी भी स्कूल में अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको हम एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते, और किसी भी स्कूल गवर्नमेंट रन स्कूल है वहाँ पर बच्चों को हम फीस नहीं ले सकते, किसी भी तरह का चार्ज नहीं ले सकता है, क्योंकि ये एक्ट कहता है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होना है। और जो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं उनके लिए भी ये होता है इस एक्ट के अंदर में कि उनका जो 25% होता है 24% जो होता है वो
0: छूट मिलेंगे
1: जी, मतलब बैकवर्ड क्लासेस जो बच्चे हैं उनके लिए मतलब रिजर्व होना चाहिए। तो मेनली ये एक्ट यही कहता है कि जो 6 to 14 ईयर से उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना ही है, भले ही अगर वो अपने एज से ज्यादा, किसी किसी का ऐसा होता है कि वो एज चला जाता है फिर वो उस क्लास में फिट नहीं होता है, तो वो कंसर्न स्कूल का ड्यूटी होता है कि उसको वो स्कूल में भर्ती कराना है, चाइल्ड स्पेशल नीड की तरह उनको ट्रीट करके उनको पढ़ाना है, उनके दूसरे जो बच्चे होते हैं उसके साथ में बराबर उनको लाना उनका ड्यूटी होता है।
0: जैसे कि अभी बाल मजदूर हमारे यहाँ पर तो बहुत ही कम होते हैं, आजकल हर कोई समझदार हो चुके हैं कि सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बाहर से लाकर भी किसी के होटलों में या घरों में काम कराते हैं, हालांकि उनके माँ पिताजी के रजामंदी के साथ ही कराते हैं, फिर भी ऐसे बच्चे अगर 6 से 14 साल के बीच के निकले तो उन पर क्या ये कानून लागू है या नहीं?
1: जी, ये जो है 6 to 14 ईयर्स जो है वो सभी बच्चों के लिए, इंडिया के सभी बच्चों के लिए उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है, और अगर कोई व्यक्ति 6 या 14 वर्ष के बच्चों को काम पर रखता है तो वो चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर उसको बुक किया जाएगा, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अगर कोई काम लगाता है तो वो चाइल्ड लेबर के अंदर में आता है, और चाइल्ड लेबर भी एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, तो हम बच्चों को अपने घर में भी काम नहीं लगा सकते हैं। किसी के बच्चे को अगर हम पढ़ाने लेके आते हैं तो उसको हम काम नहीं लगा सकते हैं, उनको पढ़ाना ही है 14 साल तक तो। हाँ, फिर अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप को हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, किसी भी अगर वो लोग दुकान चला रहा है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में, वो उसका मम्मी पापा बिजनेसमैन है तो वहाँ पर वो थोड़ा उनकी मदद कर सकता है, लेकिन वो भी स्कूल आवर्स में करना मना है, उनके वेकेशन में हो गया फिर अपने स्कूल छुट्टी होने के बाद आधा घंटा एक घंटा के लिए वो थोड़ा मदद कर सकते हैं, वो भी बहुत ही लाइट काम, हैवी काम उनको नहीं दे सकते हैं। और जो एडोलसेंट बच्चे होते हैं जो मतलब 19 इयर्स ना, जो 14 to 19 होते हैं, उनको हम हल्का हल्का अपने जो घर का दुकान हो गया जिसे मैंने आपको बताया ना, उन सब चीजों में वो मदद कर सकते हैं, बाकी 14 से नीचे 6 वर्ष तक हम किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का काम में जो चाइल्ड लेबर जैसे दिखता है, जैसे कि चाइल्ड लेबर एक्ट में मतलब किस किस एरिया में हम काम नहीं करा सकते वो लिस्ट भी दिया गया है। अच्छा। जैसे आपका फैक्ट्री वर्क हो गया ना, तो फैक्ट्रीज वगैरह में बच्चों को हम काम में नहीं लगा सकते हैं।
0: जैसे कि हमने कार्यक्रम में पहले चर्चा किए थे कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को चाइल्ड ही कहते हैं, तो मैंने अक्सर ऐसे लोगों को कई बार देखा है कि घर के बड़े या फिर कोई रिश्तेदार किसी भी छोटे बच्चे को शराब की दुकान में शराब खरीदने के लिए भेज देते हैं, या फिर किसी भी दुकान में तंबाकू से बने चीजों को खरीदने के लिए भेज देते हैं, तो उस समय क्या है ना, वो बच्चे के जो बहुत ही नाजुक समय होते हैं जीवन के, तो ये कहाँ तक सही है इस तरह के काम बच्चों को लगाना, और आप उनको क्या कहना चाहेंगे आप एक एडवोकेट होने के नाते?
1: जी, ये फिर आपका अलग कानून है जिसको हम कोटपा एक्ट कहते हैं।
0: अच्छा।
1: देखिए, जब एक बच्चे को तंबाकू या फिर शराब कोई खरीदने बेचता है तो वो ऑब्वियसली बच्चा खुद का तो नहीं होगा, उनके घर का कोई बड़ा ही उनको खरीदने बेचता है, तो इससे क्या होता है, ये तो मतलब कानूनी अपराध है, उसके ऊपर में अगर हम बच्चों को अगर ऐसे कुछ चीज खरीदने बेचते हैं तो उनको अगर इस चीज का ज्ञान नहीं होने से भी ज्ञान आ जाता है, मतलब इसे सिगरेट कहते हैं या फिर इसे दारू कहते हैं, वो ये जानने का मन हो जाता है फिर वो ट्राई करते हैं, ऐसे करके बच्चों को भी मतलब बहुत खराब असर पड़ता है,
0: वो भी गलत रास्ते पे चलने लग जाते
1: हैं, गलत रास्ते में चले जाते हैं, तो इसलिए जो घर के बड़े हैं वो खुद के लिए नहीं सोच के बच्चों के लिए सोच के एटलीस्ट बच्चों को ये सब चीज खरीदने नहीं बेचना चाहिए, और कानूनी अपराध भी है ये, और जो बेचता है दुकानदार उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई छोटा बच्चा कोई तंबाकू या फिर कोई शराब खरीदते आता है तो उनको वो नहीं बेचना चाहिए।
0: जी जी जी, तो हमारे आज के इस कार्यक्रम के समय जो है समाप्त होने जा रहे हैं, तो आज आपने हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में अपने कीमती समय निकाल कर आए और हमें कई सारे महिलाएं एवं बच्चों से जुड़े हुए अधिनियमों के बारे में जानकारी दी।

0: तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
1: धन्यवाद आपको भी।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना ओएससी यानी वन स्टॉप सेंटर तवांग के केस वर्कर एडवोकेट सोनम जंगमो से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और सेक्सुअल हैरेसमेंट इन वर्कप्लेस विषयों पर हुई भेंट वार्ता। उनसे भेंट करता थे दोर्जी ड्रमा। श्रोताओं, इसी के साथ ही मासिक कार्यक्रम महिला मंच समाप्त हुआ। मीडियम में 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज और साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, समय दोपहर के 3:50 हुए हैं और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। गीत मंजरी कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए पहला नगमा यानत लेते हैं अरिजीत सिंह और अदिति सिंह शर्मा की आवाजों में फिल्म रॉयसी। कुमार के रचित गीत को संगीत से सवारा है अमाल मलिक ने।

श्रोतों, कार्यक्रम का अग्रह नगमा आइए हम आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह और अजीज कौर के युगल आवाजों में फिल्म कपूर और संस से। इस गीत के गीतकार है डॉक्टर देवेंद्र काफिर और संगीतकार है तनिष बख्शी।

तथा संगीत यादा ए आर रहमान ने। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा यानत लेते हैं सनमरे फिल्म से अरमान मलिक, पालक मुच्छल और अमाल मलिक की आवाजों में। शेफ रचना मनोज यादव के है तथा मौशी की अमाल मलिक का।

श्रोतो समय आप आनंद ले रहे हैं चंद हिंदी फिल्मी नगमे कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। गीत मंजरी कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते हुए आइए आनंद लेते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में हॉलीडे फिल्म से। इरशाद कमल के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है प्रीतम ने।

शुद्ध भी अपने आनंद लिया। अमित द्विवेदी और अरिजीत सिंह के युगल आवाजों में क्वीन फिल्म से यनगमा, गीत अन्विता दत्त के थे तथा संगीत अमित द्विवेदी का। श्रोतों कार्यक्रम का अगला नगमा आनंद लेते हैं अतीफ असलम की आवाज में फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से। शिवरचना इरशाद कामिल के है तथा मौशिकी प्रीतम का।

Işıt O Gid मंजरे कार्यक्रम का अंतिम पेशकश को हमने लिया है नोटबुक फिल्म से विशाल मिश्रा के स्वर में। शिवरचना अक्षय त्रिपाठी के है तथा मौसिकी गौरव वसुमिका का।

श्रोताओं, विशाल मिश्रा के गाये फिल्म नोटबुक के सी नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरे अवनी पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता, समय संध्या के 4:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग। राग रंग कार्यक्रम में आइए सुनते हैं उस्ताद इमरान खान से राग मधुवंती पर सितार वादन। तो लीजिए पेश कार्यक्रम राग रंग।

श्रोतों भी आप सुन रहे थे राग मधुवंती पर सितार वादन उस्ताद इमरान खान से। श्रोतों इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग अभी पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे अब से कुछ ही पलों में यानी

0: 4:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात 4:55 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत 1000 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। पापमपारे उपायुक्त सह जिला परीक्षा अधीक्षक मामू हागे ने 30 अगस्त को आयोजित होने वाले अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड APSSP संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा CGLE 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। पापमपारे जिला प्रशासन ने महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला इकाई के सहयोग से घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013 पोष अधिनियम पर जागरूकता एवं संवेदीकरण शिविर का आयोजन किया। ऑपरेशन डॉन 2.0 के तहत अरुणाचल प्रदेश की ईस्ट सियांग पुलिस द्वारा खुफिया सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पासीघाट क्षेत्र से 8.26 ग्राम संदिग्ध हेरोइन बरामद की। 32 रोंगों विधायक इंजीनियर तालिम तावो ने सियांग जिले के पायन में अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे NH913 के तहत बिलू मुगिंग सड़क के 26 किलोमीटर लंबे हिस्से पैकेज 1 के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ किया। और कोलंबो ने दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका दूसरी पारी में 9 विकेट पर 290 रन बनाकर सिमटी और भारत ने मैच जीत लिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल ढांचा विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले।
2: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि खेलों से जीवन बदलता है और देश को गौरव मिलता है।
2: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की थी।
2: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है, और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है, हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।
1: ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित किया गया। देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हर जिले के 2-2 कॉलेजों में युवाओं ने इसमें भाग लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि भारत को अपनी खेल परंपराओं को एक जीवंत खेल संस्कृति में विकसित करना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में हिंदू कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद में हिस्सा लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश एक मजबूत खेल तंत्र विकसित करने के लिए लगातार काम कर रही है।
3: इंटरनेशनल लेवल में हमारा मेडल्स बढ़ रहे हैं, पहले तो हम 1, मुश्किल से 2 मेडल मिलते थे, अब तो हम

0: हर कंपटीशन चाहे वो कॉमनवेल्थ हो चाहे ओलंपिक्स हो एशियन गेम्स हो, अब तो मल्टीपल मेडल्स जीतते हैं इंडियन प्लेयर्स, ये तो बहुत फक्र की बात।
1: मोपम्पानी पार्क से जिला परीक्षा अधीक्षक मामू हागे ने 30 अगस्त को आयोजित होने वाली अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड APSSB संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा CGLE 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने केंद्रीय समन्वयकों, केंद्र अधीक्षकों और परीक्षा संचालन के लिए तैनात पुलिस कर्मियों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से निर्धारित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा परीक्षा के सुचारू, निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन के लिए आपसी समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच पापम्पारा जिला प्रशासन ने भी अभ्यर्थियों से परीक्षा संबंधी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और APSSB CGLE 2026 के सुचारू, व्यवस्थित एवं सफल संचालन के लिए परीक्षा एवं सुरक्षा कर्मियों के साथ सहयोग की अपील की। पापम्पारा जिला प्रशासन ने महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला इकाई के सहयोग से घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013, पोष अधिनियम पर जागरूकता एवं संवेदिकीकरण शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम में काकोई के सर्कल ऑफिसर रोमनी बागांग ने पोष अधिनियम के तहत सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, PSUs और निजी प्रतिष्ठानों में आंतरिक समितियों ICs के गठन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित संस्थानों से जल्द आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया। जागरूकता शिविर में 50 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन डॉन 2.0 के तहत अरुणाचल प्रदेश की ईस्ट सियांग पुलिस द्वारा खुफिया सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पासीघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत 4 कथित मादक पदार्थ तस्करों को पकड़ा और 2 माइल क्षेत्र के 8.26 ग्राम संदिग्ध हेरोइन बरामद की। मादक पदार्थों की अवैध तस्करी की विश्वसनीय सूचना मिलने पर DSP मुख्यालय तोनी तताग्ने के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अभियान चलाया। तलाशी और बरामदगी की कार्रवाई पासीघाट के कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई है। पुलिस ने 3 तंबाकू कंटेनर, 8.26 ग्राम वजन वाले संदिग्ध हेरोइन से भरी 2 शीशियां, 1 पीतल धातु से बना हुक्का, 1 प्लास्टिक का हुक्का और 2 सिरिंज बरामद की। इस संबंध में NDPS अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। 32 रोंगोंग विधायक इंजीनियर तालुम ताबो ने सियांग जिले के पायोंग अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे NH913 के तहत बेली निगिंग सड़क में 26 किलोमीटर लंबे हिस्से पैकेज 1 के निर्माण कार्य का औपचारिक शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने पायोंग सर्कल के लोगों के निर्णय कार्य की जा रही एजेंसी को पूर्ण सहयोग देने और निर्माण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने से बचने की अपील की। उन्होंने कार्यकारी एजेंसी से निर्धारित तकनीकी विनिर्देशों, गुणवत्ता मानकों और परियोजना के नियमों को कड़ाई से पालन करते हुए कार्य को तेजी से पूरा करने का भी आग्रह किया। इस परियोजना से क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलने और लोगों तथा सामानों की आवाजाही बेहतर होने की उम्मीद है। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हुई है। तिब्बत से आए इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पनबिजली परियोजनाओं पर ठप कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: नेपाल में आई इस भीषण त्रासदी का कारण भूकंप के झटकों से ग्लेशियर फट जाने को माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इस बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है +9779851316807 और +9779701075000। विश्व बैंक ने भी प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। इसके अलावा नेपाल में बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। समाचार कक्ष।
1: भारत नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों की पूरा सहयोग दे रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF ने कहा है कि नेपाल में आए विनाशकारी बाढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान की अब तक कोई खबर नहीं है। हालांकि दोनों राज्य सरकारों के समन्वय से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

yana pu jinga ma chaju se bak tu ka ji nyamne chue nyamne ya bu tu su ngo do ti ka ngai yala da nyila nam che ba kyu ba ti si nga la ta du du shi sam ni nga la rang si bru bi ta ta ni nyo ji ta la chu bu da ni la chu tu ni ni nyo ji to do ko ba ne ji ga su su ji no ngo do rang si ni du ba ti um din sam lo chi ni she ma ra lo ni du shi sam rang si ji du bi ji ta sem jen ཐོག་ཐོག་སོ་སོ་གན་ཅི་ཐོག་སོ་དང་ལ་ཡ་ལ་ཉི་ལ་ཅི་གན་ཅི་སེམ་ཅན་དེ་ཡིན་རང་ཤི་ཡི་དྲུབི་སེམ་ཅན་དེ་ཡིན་བུ་སམ་མོ་དུ་ཤི་མ་རལོ་ཨ་ཅིག་དང་རང་ཤོ་ག་ཉན་གནོ་ཐང་ཤོ་ཅི་སོག་ཅི་ཨ་ཅིག་དང་བེ་ཐོ་དང་རང་ཤི་ཡི་དྲུབི་ཤོ་དེ་ཡིན་མོ་སམ་མོ་སེམ་མ་མོ་ནོ་ཨ་ཅིག་དང་གང་སག་ཉན་དང་ཕུམ་བུ་ང་ལ་དེ་ནེ་དང་བེ་གང་ས
nyau samboji tirang jing me giri manolo it baji gangbo no baji gangbo tanye do didang diwo nyambe da tanye didang diwo nyambe duxie tanye zambu duxie dindi rilene yabo duxie tanye zambu nyambe duxie ima da duxie mebar gyoba yang ma yinbi chiro nishi rangshin ki drubi chi yin sambo duxie diri rilene manolo shindare te didang diwo nyambe tanye zambu yinbi duxie ji ते मनो ये मिनो बोलुने तान्ये जंदो दाबे ने लियुनिन गोबु रांना शेन परिदा सुरी न्यो वंगो दोता तान्ये जंदो दुशीजिता ते मेबर गिवया मई बिचिरो तान्ये जंदो दा दिदा दिन्या बि दुशी दिरे युनो मेदा इदे इत्सा मोक्त दुशी दिरो दु मेदा गादा योजो शुरु दु इजिता मरासु इरेरे मनो लोनी जुवा मई बिचिरो ते जिचिर शेनाई तावजो ताजी तान्ये दा जवा वि तोंबानी गोर शेदुबे रांसिंग की डुबती का ते रांसिंग की मधुम ना मनुष्यों के द्वारा ये ना इसी में ना थाने जम्बो नौ न्यों मतों दी तोड़ना का किधर में तादें चीज़ है ना राज्य कर दे तीसे आला दांतो दूषित चुना तीसे न्यूसिंग की दूषित या चुना सेम्जिंग तो दूषित बना सो तो दूषित बना कांसा तो दूषित चुना रबजोर कल्टी दिए से दा रबजोर सांगी से हमारे नाम तो भी बिना न्यामन्यों तो नाम तो भी रबजोर गैसी कलिंगे ये भी निश्चित याना दा निला नम छोट डोबुला ची निशा नाओ न्याबे दा रांसिंग जी डुबी दादू दुष्य ती रसू ही ना ऐसी उ दादू नाओ न्याबे अंजिंग दांजिंग जी की या ऐसी के दी जंग दूषित क्या चुन लाये? तंजीन ने ना चिता निर्सम भी दूषित चीं के लान रह गिम बोलूं ने लूला लेवां जीजे तुम बोला ने दूषित इतना तो यास्ता मैंने रांसिंग जुबा जिनाओ ये ना जिम्बी जिम्बा जिनाओ ये ना इसी दूषित चीता तुम बोला सोबा इसी घराने या राउडो में था इतना तो यास निर्सम अजी रांसिंग जुबे सौ दुष्य दिए के युम रांसिंग जुबे दादो दुष्य दिए युम इजी दुष्य कांसा तो दुष्य राई युम ये चुना कैसी उदिन दे रसो ये ना दिए से न्यूसिम की दुष्य क्या चुवा जुरो इजी दा दांजी ने ना दांजी ये डांग याजी न्यूसिम की समलोची ने इजी छातांग बाजी ओनो में दा अजी यमोशिया बाजी की रो दो बे इन दुष्य क्या चुवा चुवे चिरो दा इजी रबजोर ने ओबर शे दे ने इजी उनांग कंदुरु ने देवी दुगी सिक्ताब न्यूसिम की चावा एजिक दांजिन मरीबा इनोजी नहीं कंदुरु न्योंदा न्यूसिम की चावा एजिक दा चावा जिदा गा दांजिन शितुदु बे इन में गंबर शेदे देवी दुना गा चेरा गा या सुबा मबा शेजे वे चांसों दु जुबा दिए चेना यां गा ला दांदु दुशे माजु सिम्जिन दु दुशे दा सो दु दुशे दा कांसा दु दुशे माजु मोहनी ता देवी दुसु ना केवा गामा गामा दुसु गा एजिक दा सांजी चुमनें दे कुजी गा सरम आजा ते बजे बे के वंगाब जों तो ठीका जी बे ट्रांसो सुबह मवनी एजि कुजि लोन में के वलों ये मिशे जावे ट्रांसो दु जु बे ती छे ने एजि ट्रांसो मो तो जी शों बु तु जी त ट्रांसो सुबह मव तब जु जी ने मिजु दियु नो त न शुर मो सो या तु जु जो गे यम या वो द ट्रांसो सुबह मो ई या वो द कुजि गा शे बो जी ती छे ना या जब बे बेना शे जी तो के बना से बेना ला ना ले बेना गा छो द तु तब नोम द इजे जिक उजिल था मजों जिक बेकुल का हो मजों जि देंबे टॉप किला देन या ओया जों तम नो में इगो दो या इजि बेना शे नि गाय ने बे गा ता दु जिबे

के सिटी या डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो इंटरनेट को पता होनी चाहिए, तो कैमरा उठाओ, बिकॉज दिस इज योर मोमेंट। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज शुरू हो रहा है 2 states और 4 union territories में। बस 1 to 3 minute का वीडियो बनाओ और शोकेस करो अपने डिस्ट्रिक्ट की कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, ट्रेडिशंस, लोकल स्टोरीज या यूनिक आइडेंटिटी। पार्टिसिपेट करना है? वीव्स OTT ऐप पर रजिस्टर करो, जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर। माई वीव्स पर क्लिक करो, प्रोग्राम सेक्शन में जाओ और अपना वीडियो सबमिट करो। और हाँ, प्राइज मनी भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50,000 रुपीज, स्टेट लेवल पर 2 lakh rupees और नेशनल लेवल पर 5 lakh rupees। सबमिशन ओपन है 1 August से 30।

0: 1 अगस्त 2026 तक। तो अपनी स्टोरी और क्रिएशन को दो स्पॉटलाइट।
1: मीडियम में 97.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज और FM 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय शाम के 6:11 हुए हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा के अंतर्गत आइए हम आपको अवगत करवाते हैं आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। आज के शेष कार्यक्रमों में अब से 2 देर बाद यानी शाम 6:20 पर सुनेगा दैनिक चेतन में गंगर बस्ती के आमा दुर्जी उठन और साथियों से बोध भक्ति भजन। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अन्य प्रसारित शाम 7 बजे सुनेगा हिंदी में समाचार। शाम 7:05 पर सुनेगा अंग्रेजी में समाचार। आज शाम 7:10 पर सुनेगा कार्यक्रम आज की कविता में गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल क्रमितिंग के 4th कक्षा के छात्र चंजन लामो से कविता। कविता का शीर्षक होगा चिड़िया का घर। आज शाम 7:11 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम एक और अनेक के अंतर्गत किस्मत कनेक्शन फिल्म से आतिफ असलम और अलका यादमी के सुरों में, लैला मजनू फिल्म से आतिफ असलम और ज्योतिका टांगरी की आवाजों में, रमैया वास्तव फिल्म से आतिफ असलम और शीरा घोषाल की आवाजों में, एंटरटेनमेंट फिल्म से आतिफ असलम और शारमाली कोलकाते की आवाजों में, तेरी नाल लव हो गया फिल्म से आतिफ असलम मोहन अली ठाकुर और प्रिया पंचल की आवाजों में, सत्य में जायते फिल्म से आतिफ असलम और तुलसी कुमार के सुरों में और फटा पोस्टर निकला हीरो फिल्म से आतिफ असलम और चिन्मय श्रीपदा की आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा 7:50 पर सुनेगा रीजनल न्यूज। आज हम 7:55 पर सुनेगा एक देशभक्ति गीत AR रहमान के स्वर में फिल्म स्वदेश से। आज रात्रि 8 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने हिंदी फिल्मी गीत सुन सकेंगे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन रात्रि 8:30 पर, 8:45 पर समाचार संध्या तथा ठीक रात्रि 9 बजे आप सुन सकेंगे News@9। आज रात्रि 9:15 पर कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की एक बार फिर जानकारी दी जाएगी। आज रात्रि 9:16 पर आज के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं ये तो थी आज की शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए श्रोताओं अब हम आपको कल यानी 28 अगस्त 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दूं। हमेशा की तरह हमारा कल का सभा आरंभ होंगे कल दोपहर 2 बजे अंग्रेजी में समाचार के तहत। कल दोपहर 2:15 पर सुनेगा हिंदी में समाचार। कल दोपहर 2:30 पर सुनेगा पहले गांधी स्मृति तत्पश्चात नरेंद्र चंचल की आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत कार्यक्रम वंदना के तहत। कल दोपहर 3 बजे आप आनंद ले सकेंगे अरुण जमैतिया जसवा हालम प्रियंका और साथियों के सुरों में कोकफोरक आधुनिक नगमे फिल्म कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत। कल दोपहर 3:30 पर सुनेगा कार्यक्रम मेरी बात। इसमें आप सुन सकेंगे जेएनवी तवांग के

ग्यारहवीं कक्षा के छात्र मिस जाम्बे वांगमो से राष्ट्र निर्माण में एनसीसी की भूमिका विषय पर दिए गए वार्ता कल पर 3:33 पर सुनेगा महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत के अंतर्गत आह्वान ले सकेंगे सिमरन फिल्म से गुरु रंधवा और जोनिता गांधी की आवाजों में दोस्ताना फिल्म से शंकर महादेवन सुनिधि चौहान और वैशाल दलानी की आवाजों में हैप्पी न्यू ईयर फिल्म से श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाजों में डियर जिंदगी फिल्म से जैस्लिन रॉयल और अमित द्विवेदी की आवाजों में और सिमरन फिल्म से गुरु रंधवा और जोनिता गांधी की आवाजों में चंद नगमे कलों पर 3:50 पर आह्वान ले सकेंगे कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत सत्यमय जयते फिल्म से आतिफ असलम और तुलसी कुमार की आवाजों में टू स्टेट फिल्म से अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा की आवाजों में ये जवानी है दीवानी फिल्म से बैनी दयाल और शेफाली अलवारिस की आवाजों में बधाई दो फिल्म से अरिजीत सिंह और रूपाली मोक के सुरों में केदारनाथ फिल्म से अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों में सूर्यवंशी फिल्म से अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाजों में केसरी फिल्म से अरिजीत सिंह और अजीज कौर की आवाजों में हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म से अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में और लव आजकल फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में चंद गीत कल संध्या 4:30 पर सुनेगा शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग कल शाम 5:00 सुनेगा रोजाना की तरह मोनपा कार्यक्रम के अंतर्गत नामदर लेरम कल शाम 5:35 पर सुनेगा साप्ताहिक कार्यक्रम कुंसिल के तहत तवम मठ के मठदेश से लमरिम सुशे तत्पश्चात केसी संघ टाशी से मोनपा अनुवाद 6:00 लेरिम सीरा 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा कल शाम 6:20 पर सुनेगा तवम मठ के मठदेश से लमरिम सुशे का शीश भाग तत्पश्चात गेशी संगीताशी से मोनपा अनुवाद सुन सकेंगे कल शाम 7:11 पर सुनेगा साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण कल शाम 7:45 पर सुनेगा प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर कल शाम 7:55 पर सुनेगा एक देशभक्ति गीत लता मंगेशकर की आवाज में कल रात 8:00 आप सुन सकेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने हिंदी फिल्मी नगमे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत कल रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन रात 8:45 पर समाचार संध्या तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9:00 कल रात्रि 9:16 पर कल के सभी प्रसारण समाप्त होंगे तो श्रोताओं ये तो थे आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी इन्हीं जानकारियों के साथ ही कार्यक्रम जरोखा अभी पर समाप्त होता है आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है श्रोताओं हमारा अगला कार्यक्रम सुनेगा मोनपा में कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

Kuwa jise madonga nyama ni ba tu dei.

Yemajin,

ఏదీశు ఏదీశు.

인바나 이니제조 메바소와제 우예 칸도 논라에 종사하지 울보리 동슬바 대조 메 우예 베마 주네 나소바리

제제로서 남게 발제 나도서 삼배 발제 이소서 굴배 자살교소제 오마호 배자구로 배마세디

Kuna jaye purbanam iram nadaje.

Samye chimbo trupa che kinan trochen gudun na.

0: कमजोर।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार अभी तक 30 से अधिक देशों के 1300 से अधिक नागरिक लापता हैं। इनमें 288 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। प्रवक्ता ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गए 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है। चीन में फंसे भारतीय नागरिकों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि पेचिंग में भारतीय दूतावास उनकी सुरक्षित निकासी के

लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी

0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के साथ देश का संबंध सदैव राष्ट्रहित के अनुरूप होना चाहिए। राष्ट्रपति भवन में आज भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में राष्ट्रपति ने ये बात कही। उन्होंने राजनयिकों से निवेश, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में उभरते अवसरों पर नजर रखने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी श्रृंखला के युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है।
1: आज का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
0: सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मुकाबला ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज मैच के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन पर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. India stepped up efforts to trace and rescue internationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. Death toll in yesterday's massive flash floods in Nepal has reached 359. As authorities race against time to find over 1,300 missing people, including 288 Indians. Addressing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that contact has not been established with 288 internationals who were present in Nepal when the tragedy occurred. They include 73 Indians who were working on the Trishuli 1 power project. He said the Indian Embassy in Kathmandu is in touch with the project authorities to collect information as communication links in the affected area have been disrupted. External Affairs Ministry has informed the 21 Indian nationals from Tamil Nadu who travelled for the Kailash Mansarovar Yatra have been rescued in Nepal. Mr. Jaiswal said the Indian authorities are making all possible efforts in coordination with the Nepalese authorities to establish contact with the stranded Indians and ensure the safety.
3: Prime Minister yesterday spoke to the Prime Minister of Nepal, conveyed our deepest condolences, conveyed that India stands in solidarity with people of Nepal, as also offered all possible humanitarian assistance from our side. As per information currently available, there are 288 Indian nationals who remain uncontactable.
2: Mr. Jaiswal said that India has sent more than 47 tons of emergency relief supplies aimed at supporting Nepal's ongoing rescue and relief operations. He said that India is also mobilizing Bailey bridges to assist in rescue and relief efforts. Mr. Jaiswal said the government has set up a control room with the Minister of External Affairs, which will function round the clock. He said Indian embassies both in Kathmandu and Beijing have also set up 24/7 helplines.

आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोता समय शाम के 7:12 हुए हैं। अब प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम एक और अनेक। इसके अंतर्गत आइए आनंद लेते हैं आतिफ असलम के संग अन्य गायकों से चंद हिंदी फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का पहला नगमा ये सुनते हैं किस्मत कनेक्शन फिल्म से आतिफ असलम और अलका याग्निक की युगल आवाजों में। गीत शहीद कदरी का है तथा संगीत प्रीतम का।

श्रोतों, कार्यक्रम का अगला नगमा ये आनंद लेते हैं आतिफ असलम और ज्योतिका टांगरी की युगल आवाजों में फिल्म लैला मजनू से। शब्द रचना इरशाद कमिल के है तथा संगीत जॉय बोरवा का।

श्रोता तो भी आपने सुना थी फसलम और श्रेया घोषाल की गुल आवाजों में रमैया वास्तव्य फम से यह खूबसूरत गीत। इस गीत के गीतकार थे प्रिया पंचल तथा संगीतकार थे सचिन जिगर। श्रोतों कार्यक्रम का अगला नगमा ये आनंद लेते हैं इंटरटेनमेंट फम से आतिफ असलम और शालमली कोलकाता की आवाजों में शफरचना प्रिया पंचल और धुन सचिन जिगर का।

श्रोतों, इस समय आप आनंद ले रहे हैं साप्ताहिक कार्यक्रम एक और एक के अंतर्गत आतिफ असलम के संग अन्य कलाकारों से चंद हिंदी फिल्मी नगमे। कार्यक्रम एक और एक को यूं ही जारी रखते हुए आइए आनंद लेते हैं तेरे नाल लव हो गया फिल्म से आतिफ असलम, मोनाली ठाकुर और प्रिया पंचल की आवाजों में। मायरपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है सचिन जिगर ने।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गए तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं नेपाल में आए अचानक बाढ़ की त्रासदी के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास और तेज कर दिए गए हैं। नई दिल्ली में आज मीडिया को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि त्रासदी के समय नेपाल में मौजूदा 288 भारतीय नागरिकों में अब तक संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है। इनमें 73 भारतीय नागरिक त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत थे। उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में संचार व्यवस्था बाधित होने के कारण काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास परियोजना के अधिकारियों के संपर्क में है और आवश्यक जानकारी जुटा रही है। श्री जायसवाल ने कहा है कि भारतीय अधिकारी नेपाली अधिकारियों के साथ समन्वय कर फंसे हुए भारतीय नागरिकों के संपर्क स्थापित करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। चीन की ओर से फंसे एक भारतीय नागरिक के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा है कि बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने उन्हें सुरक्षित निकालने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस बीच नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मरने वालों की संख्या आज बढ़कर 270 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा तंत्र विकसित किया जाएगा जहां खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर समर्थन मिल सके। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल केवल पदक जीतने तक सीमित नहीं बल्कि विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल प्रतिभा और युवा शक्ति को एकजुट करने में का मिशन होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि देश के हर जिले में वैश्विक

0: मानचित्र पर चमकने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आज भारत में खेल एक बेहतरीन करियर और पेशे के रूप में उभर कर सामने आया है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया संवाद केवल खेलों पर चर्चा करने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि ये संवाद एक ऐसा मंच है जहां प्रत्येक विचार देश की खेल संबंधी सोच को नई दिशा दे सकता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के अवसर पर आज लोअर दिबांग वैली के रोइंग में खेलो इंडिया संवाद के तहत युवा कनेक्ट कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम देश भर में समन्वित रूप से आयोजित युवा सहभागिता पहल के रूप में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन रहा। इसके बाद स्थानीय खिलाड़ियों, युवा आइकन्स, जनप्रतिनिधियों और भाग लेने वाले युवाओं के साथ खेलो इंडिया संवाद आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मौजूदा युवा आइकॉन में अंडर 17 राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी केसाया एलाप्रा एवं प्रिशा कचारी, जिला और राज्य स्तर की विकसित भारत युवा संवाद की विजेता तथा राष्ट्रीय संसद में अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुकी अबिदा बेगम और खेलो इंडिया फुटबॉल कोच अगानो लिंगी शामिल रहे। कार्यक्रम में JTGMD कॉलेज और सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज रोइंग के युवा द्वारा भी भाग लिया गया। इसी प्रकार खेलो इंडिया युवा संवाद खेल की बात पीएम मोदी के साथ 2026 का आयोजन आज डॉन बॉस्को कॉलेज जोलांग ईटानगर में भी किया गया। इसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, एनएसएस स्वयंसेवकों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और शिक्षकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। रक्षाबंधन समारोह के तहत विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय चिंपू के विद्यार्थियों ने आज अपने शिक्षकों के साथ लोकभवन ईटानगर में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पारनायक रिटायर्ड से मुलाकात कर उन्हें राखी बांधी। विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा है कि रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का उत्सव होने के साथ साथ प्रत्येक नागरिक को समाज को जोड़े रखने वाले मूल्यों की रक्षा और उन्हें मजबूत करने में अपने सामूहिक दायित्व की याद भी दिलाता है। उन्होंने कहा कि ये त्योहार लोगों को करुणा, सद्भाव, महिलाओं के सम्मान और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी की भावना बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को अनुशासन, ईमानदारी, सहानुभूति और सेवा भावना विकसित करने और जिम्मेदार एवं उपयोगी नागरिक बनने की सलाह दी। इसके बाद ब्रह्म कुमारी जोनू के नेतृत्व में ब्रह्म कुमारी संस्था के सदस्यों ने भी रक्षाबंधन के पावन अवसर पर राज्यपाल को राखी बांधी। दिबांग वैली अनिनी स्थित पीएम श्री GUPS आंगुली में आज जिला स्तरीय राष्ट्रीय आविष्कार अभियान RIA 2026 का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा, रचनात्मकता, नवाचार और गणितीय क्षमता को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में दिबांग वैली के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। और ईटानगर मौसम विभाग ने आज पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी ईटानगर, द न्यूज रेड बाय मॉर्गन बागरा। The Khelo India Samvad, a Yuva Connect program on the occasion of National Sports Day 2026, was successfully organized today as a nationally synchronized youth engagement initiative at Roing, Lower Dibang Valley. The program featured the virtual address by Prime Minister, followed by a Khelo India dialogue with local sports persons, youth icons, public representatives and participating youth. The youth icons present during the program were Kesia Elapra and Prisa Kachari, both under 17 national badminton player, Abida Begum, district and state Viksit Bharat Youth Parliament winner, represented Arunachal Pradesh at the national parliament, and Agano Lingi, Khelo India football coach. The program witnessed active participation from youth of JTGMD College and Government Polytechnic College, Roing. Similarly, Khelo India Yuva Samvad, Khel Ki Baat, PM Modi Ke Saath 2026 was also held today at Don Bosco College, Jolang, Itanagar. A large number of students, NSS volunteers, social media influencers and teachers actively participated in the Khelo India Yuva Samvad. As part of the Raksha Bandhan celebrations, students of Vivekananda Vidyalaya Chimpu, accompanied by their teachers, called on Governor, Lieutenant General Retired KT Parnayak at Lok Bhavan, Itanagar today and tied Rakhis to him. Interacting with the students, the Governor said that Raksha Bandhan is a celebration of a brother-sister relationship and also a reminder of the collective duty of every citizen to protect and nurture the values that bind society together. He emphasized that the festival inspires individuals to uphold compassion, harmony,

श्रोताओं, भी आपने सुना ए आर रहमान की आवाज में एक देशभक्ति गीत फिल्म स्वदेश से। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं, समय रात्रि के ठीक 8 बजे हैं। लीजिए श्रोताओं, और प्रस्तुत है कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। इसके अंतर्गत आइए आनंद लेते हैं। आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश चंद पुराने हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला फरमाइश पेश है फिल्म बागी से, अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की युगल आवाजों में। गीत समीर के है तथा संगीत आनंद मिलन का। इस गीत की फरमाइश की है कोपर गांव से सुरेश मेलोदी और वर्षा मेलोदी, शिव गांव से आफे राम गोंदाली और उषा गोंदाली।

आप सब है पद्मपुर श्री गंगानगर राजस्थान से मीर अरोरा, कीर्ति अरोरा, भूमिका अरोरा और ममता अरोरा। आप सबके फरमाइश पर यह आनंद लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म एक फूल दो माली से आशा भोसले के स्वर में। इस गीत के गीतकार है प्रेम धवन तथा संगीतकार है रवि

मेरठ से आप है दिग्दर्शन गौर और कविता गौर। निमनाबाद जिंद हरियाणा से आप है जसवीर सिंह अरोरा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। आप सबके फरमाइश पर आयानत लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म हीना से लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत के गीतकार एवं संगीतकार है रविंद्र जैन।

श्रोताओं, इस समय आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत। आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने हिंदी फिल्मी नगमे आकाशवाणी के तवंग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते हुए आइए आनंद लेते हैं अंधा कानून फिल्म से आशा भोसले और किशोर कुमार की युगल आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने तथा संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत की फरमाइश की है गांधी चौक बर्मा राजस्थान से आप है बबलेश पनवार, देनी पनवार और मनीष पनवार। राम देवरा से आप है दिनेश चौहान। खलीफों की बावड़ी से आप है खुदा बख्श खलीफा। तो ये आनंद लेते हैं यह गीत।

राज्य असम से हितेंद्र दास के फरमाइश पर आयाना लेते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म आराधना से लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल आवाजों में शेफ रचना एस टी बर्मन के है तथा धुन आनंद बख्शी का।

0: श्रोताओं, वे आप ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ ही आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादों वाला कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत यहीं समाप्त होता है। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आपसे कुछ ही पलों में, यानी रात्रि 8:30 पर सुनिएगा समाचार स्पोर्ट्स स्कैन, रात्रि 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या, तथा रात्रि 9 बजे आप सुन सकेंगे न्यूज एट 9। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।
1: अरुणाचल प्रदेश के क्रिएटर्स सुनो, आपके होम टाउन की वाइब एकदम नेक्स्ट लेवल है। पहाड़, कल्चर, खाना, ट्रेडिशंस और ढेर सारी स्टोरीज। अब टाइम है अपनी स्टोरी को इंडिया की स्टेज तक ले जाने।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और हम एक बार फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज कार्यक्रम में बात की जाएगी भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले गए दूसरे क्रिकेट मुकाबले की, जो परिणाम भारत के पक्ष में नहीं दे सका। हालांकि श्रृंखला भारत ने 1-0 से अपने नाम कर ली और ये मैच ड्रॉ रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। कार्यक्रम में रुक किया जाएगा हॉकी विश्व कप का, जहां आज भारतीय महिला टीम ने पिछले 52 सालों का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया है। जर्मनी को 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में 3-1 से हरा करके। और पीएसए बुदापेस्ट स्क्वाश टूर्नामेंट में अब से कुछ ही देर बाद सेमीफाइनल में भारत के वीर चोटरानी और वेलनवंत सेंथिल कुमार आमने सामने होने जा रहे हैं। सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू किया जाए कोलंबो से, जहां भारत और श्रीलंका के बीच आज 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला खेला गया और यह मुकाबला आज अंतिम दिन ड्रॉ रहा। फॉलो ऑन खेलने उतरी श्रीलंका की टीम दूसरी पारी में आज 5वें और अंतिम दिन का खेल समाप्त होने तक 9 विकेट पर 429 रन बना चुकी थी। श्रीलंका के लिए सोनल दिनुषा ने 264 गेंदों पर 133 रन की शानदार पारी खेली और वो अंत तक नाबाद होके पवेलियन लौटे। और उन्होंने कह भी सकते हैं कि आज अंतिम दिन श्रीलंका के पुछल्ले बल्लेबाज यानी टेल हैंडर्स के साथ टीम को हारने से बचाया और एक ड्रॉ मुकाबला देने में मदद की। श्रीलंका पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी, जबकि भारत ने 9 विकेट खोकर 503 रन बनाए थे और अपनी पारी घोषित कर दी थी। इस मैच पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला। विशेष, उम्मीद थी हम लगातार दूसरे तीसरे दिन के बाद से जिस तरह भारत ने पूरी श्रृंखला में खेल दिखाया, भारतीय टीम हमेशा हर मोर्चे पे फ्रंट फुट पे दिखी, डोमिनेट कर रही थी। आज भी हमें आखिरी समय तक उम्मीद थी कि शायद अब श्रीलंका ऑल आउट होगी और भारत इस स्कोर को चेस करेगी, और जिस 1-0 से भारत को संतोष करना पड़ा वो 2-0 हो सकता था, लेकिन 5वें दिन के खेल में क्या क्या बीता।
1: बिल्कुल शक्ति, आज भारत की जो सीरीज 1-0 पे खत्म हुई है वो 2-0 पर भी खत्म हो सकती थी। लेकिन अगर आज के खेल की बात करें, आज के खेल की या पूरे मुकाबले की बात करें, तो श्रीलंका के नाम रहा है।

0: मुकाबले की शुरुआत में हावी नजर आई थी क्योंकि 500 रन का मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो श्रीलंका के ऊपर था, जिसके चलते वो 290 रन पर सिमट भी गए थे। लेकिन जब वो दोबारा बल्लेबाजी करने के लिए आए तो सोनल दिनुशा ने अपनी बैटिंग एक्सीलेंस दिखाते हुए 133 रन की शानदार पारी खेली। इसके साथ ही केशारा नुवांथा के साथ उन्होंने शतकीय साझेदारी करी और उसके बाद प्रभात जयसूर्या, लहरू कुमारा, असिता फर्नांडो के साथ महत्वपूर्ण साझेदारियां करते हुए मुकाबले को ड्रॉ की ओर पहुंचा दिया। वहीं पसिंदू सूर्या बंदारा ने 92 और कमिंदू मेंडिस ने 55 रन का योगदान टीम की झोली में किया।
1: जी बिल्कुल, और क्रिकेट में कहते हैं कि पार्टनरशिप्स बिल्ड द मैच। आज हमने देखा कि किस तरह साझेदारियों ने इस मुकाबले को बनाया नहीं लेकिन मुकाबले को बचाया, और यही शायद टेस्ट क्रिकेट की, रेड बॉल क्रिकेट की खूबसूरती है जिसको हम देखना चाहते हैं। आखिरी दिन तक मैच गया और शायद श्रीलंका ने आखिरकार मेजबान टीम ने परिणाम को काफी हद तक कह सकते हैं भले जीतना हासिल की हो लेकिन अपने पक्ष में रखने का काम किया। एक खिलाड़ी जो लगातार इस पूरे टूर्नामेंट में श्रीलंका की तरफ से सुर्खियों में रहा, दिनुशा, सोनल दिनुशा, जिन्होंने आज भी शतकीय पारी खेली, पहली पारी में भी शतक लगाया था। किस तरह से इस पूरे खिलाड़ी को देखा जाए श्रीलंका की तरफ से?
0: सोनल दिनुशा एक बहुत ही शानदार बल्लेबाज बनके उभरे हैं श्रीलंका के लिए। उन्होंने इस पूरी श्रृंखला में 3 शतक लगाए हैं और 420 रन बनाए हैं। इसके साथ ही साथ वो पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दोनों पारियों में शतक लगाए, टेस्ट क्रिकेट इतिहास की बात है। और वहीं जहां आपने साझेदारी की बात करी तो उन्होंने केशारा नुवांथा और उनके साथ शतकीय साझेदारी, प्रभात जयसूर्या और लहरू कुमारा, इन सभी के साथ साझेदारी तो करी ही, साथ ही साथ 538 गेंदें, लगभग 90 ओवर का खेल जो है इन लोगों ने खेला और आज का पूरा दिन जो है अपनी तरफ करते हुए मुकाबले को ड्रॉ कराया।
1: जी बिल्कुल, हालांकि सीरीज भारत के पक्ष में रही है तो भारत के दृष्टिकोण की भी बात की जाए। भारत के लिए क्योंकि अहम सीरीज थी, WTC की टेबल में हम लगातार एक अच्छा होल्ड पाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा स्थान पाने की, भारत के लिए क्या सकारात्मक पहलू इस श्रृंखला से निकल करके आए?
0: भारत के लिए सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू यह है कि 2023 के बाद पहली अवे सीरीज जो है वो भारत ने अपने नाम करी है। अगर हम आखिरी 5 सीरीज की बात करें तो ये तीसरी श्रृंखला भारत ने जीती है और एक ड्रॉ कराई है, एक हारी है। हार का सामना भारत को करना पड़ा था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जब 2-0 से हार मिली थी, जिसके कारण से मनोवैज्ञानिक दबाव भारत के ऊपर था और इस सीरीज के बाद से WTC की ओर थोड़े पॉजिटिव्स नजर आएंगे भारतीय टीम को। हालांकि अभी वो 51.52% अंकों के साथ 5वें स्थान पर मौजूद है और 11 मुकाबलों में 5 जीत और 4 हार, 2 ड्रॉ के साथ अभी बने हुए हैं। लेकिन अब जो 7 मुकाबले बचे हैं उनमें से कम 6 मुकाबले जीतने पड़ेंगे, नहीं तो इससे कम में भारत के लिए WTC फाइनल के दरवाजे जो हैं बंद होते नजर हमको आएंगे।
1: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि आने वाली राह जो है और चुनौतीपूर्ण होगी क्योंकि भारत अब अगर रेड बॉल क्रिकेट की बात की जाए तो वापस 19 नवंबर को भारतीय टीम देखने को मिलेगी वेलिंगटन में, जहां न्यूजीलैंड में सीरीज खेलनी है, वो भी आपको विदेश में जाके खेलनी है, तो सेना कंट्री का दबाव वाकई अपने आप में कुछ अलग होता है। और अगर आज के मैच की बात वापस कर ली जाए तो मैन ऑफ द मैच, जैसा कि हमने बताया कि दोनों पारियों में शतक लगाने वाले सोनल दिनुशा को चुना गया जबकि भारत के देवदत्त पडिकल को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। विशेष बहुत कम समय में समझना चाहेंगे, देवदत्त पडिकल इस पूरे टूर्नामेंट में एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में जो कि पहले मैच में शतक आया है, इस मैच में भी शतक था और शायद लोगों को याद नहीं होगा जो प्रैक्टिस मैच खेला गया दोनों टीमों के बीच में उनमें भी इस खिलाड़ी ने शतक लगाया है, तो एक अच्छा भारत को मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाज मिला है।
0: जी शक्ति, भारत के सामने 3 नंबर के बल्लेबाज की समस्या जो है टेस्ट क्रिकेट में काफी समय से बनी हुई थी लेकिन इन 2 टेस्ट मैच की 3 पारियों में देवदत्त पडिकल ने 328 रन बनाकर उसको लगभग समाप्त करने का कार्य किया है।
1: जी बिल्कुल, और अब इसके बाद रुख किया जाए कुछ फर्स्ट क्लास क्रिकेट और अंडर-19 क्रिकेट का, जहां पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग और भारत के कप्तान और मुख्य कोच रहे राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ को ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ आगामी 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय अंडर-19 टीम में शामिल किया गया है। उत्तराखंड के बल्लेबाज लक्ष्य राय चंदानी को टीम की कमान सौंपी गई है जबकि मध्य प्रदेश के बल्लेबाज जसवर्धन चौहान उपकप्तान होंगे। ये मुकाबले राजकोट में 18, 21 और 23 सितंबर को खेले जाएंगे, तो कहा जा सकता है कि झलक देखने को मिली सहवाग की। अगर बात की जाए अरविंद सहवाग की और द्रविड़ की, शायद कहीं ना कहीं वंश नजर आता है जब ये मैदान पे उतरते हैं खिलाड़ी।
0: जी बिल्कुल, अन्वय द्रविड़ और आर्यवीर सहवाग दोनों ही मतलब जो है बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। अगर अन्वय द्रविड़ की हम बात करें तो पिछले साल जो है उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था विनोद मनकर ट्रॉफी में और आर्यवीर सहवाग अभी DPL खेल रहे हैं और अंडर 19 में दिल्ली के लिए बहुत शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि भारत के लिए एक अच्छा पूल जो है वो हर मोर्चे से तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। अब कार्यक्रम में बात की जाए युवा इंडिया संवाद की। देश भर में आज खेलो इंडिया संवाद

0: खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से युवाओं, खिलाड़ियों और विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। सुनते हैं हमारी सहयोगी नईम अख्तर की ये रिपोर्ट।
1: भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है।
2: खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में आज देश भर के युवा खेल, नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों को लेकर एक साथ एक मंच पर नजर आए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से मोबाइल की स्क्रीन छोड़कर मैदान पर पसीना बहाने की अपील की।
1: देश में स्पोर्ट्स कल्चर तभी बनता है जब सामान्य मानवीय से जुड़े, जब स्कूल्स स्पोर्ट्स के पीरियड को करिकुलर नहीं जीवन का हिस्सा माने। स्क्रीन से ज्यादा स्पोर्ट्स सेंटर्स की अहमियत है, प्ले स्टेशन से ज्यादा प्ले ग्राउंड की अहमियत है।
2: प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि आज भारत में खेल एक बेहतर करियर और पेशे के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों को ओलंपिक जैसे आयोजनों में ऐसे खेलों के प्रति अपना रुझान बढ़ाना चाहिए जिसमें देश अब तक हिस्सा नहीं लेता है।
1: ओलंपिक्स में जितने अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं, भारत की टीमें उसमें से आधे स्पोर्ट्स में हिस्सा ही नहीं लेती, यानी मेडल टैली के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए तो हम कम्पीट ही नहीं करते। हमें मेडल टैली बढ़ाने के लिए इन खेलों में भी महारत हासिल करनी ही होगी।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद को याद करने का भी एक मौका है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेल राष्ट्रीय प्राथमिकता और युवा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है।
3: भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसे पहलों तक आपने फिटनेस को लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मोमेंट बना दिया है।
2: कार्यक्रम में देश के विभिन्न शहरों में लोग वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े और अपने विचार भी रखे।
4: संवाद के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्टूडेंट्स से कहा कि स्टडीज के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी एक अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बनाए। उन्होंने यूथ को ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए और फिजिकली फिटनेस के साथ साथ मेंटली स्ट्रेंथ के ऊपर भी फोकस करने का मैसेज दिया।
5: आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमने भाषण सुना, उसके लिए जो विजन है उनका वो बहुत ही अच्छा रहा है। वो जो चाहते हैं कि हम 2036 में जो ओलंपिक थे उसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा मेडल्स आए और ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स में से पार्टिसिपेट करें।
6: आज तक खेलो इंडिया संवाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के नाल बहुत ही इंस्पायरिंग रहा। वो यूथ नु हमेशा डेडिकेशन दे नाल हमेशा मोटिवेट करन लई रहंदे ने कि असी हाडा यूथ देश लई अगे वधे ते हमेशा देश लई काम करे।
7: आई एम एमटीबी साइक्लिस्ट एंड एशियन मेडलिस्ट। सो टुडे वी हैड अ कन्वर्सेशन विद पीएम अबाउट स्पोर्ट्स। सो आई एम रियली हैप्पी हाउ द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग अस स्पोर्ट्स एंड फंड्स एंड ऑल द फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अस।
8: माय नेम इज जिनिबिस मू फ्रॉम एनएसएस वॉलंटियर माउंटी कॉलेज। थ्रू दिस खेलो इंडिया संवाद लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स।
2: ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत ने आयोजित किया। ये कार्यक्रम तस्वीर है नए भारत की, जहां युवाओं का हुनर प्रतिभा से पदक तक का सफर तय कर रहा है और पोडियम पर लहराता तिरंगा खेलों की दुनिया में सरकार से सहयोग, खिलाड़ियों की मेहनत, खेल व्यवस्था में होते बदलावों की कहानी बयां कर रहा है।
1: खेल हमें केवल चैंपियन बनना ही नहीं सिखाता, बल्कि खेल हमें एक बेहतर कंपटीटर बनाना भी सिखाता है। उठना, गिरना, गिरकर फिर से उठना, स्पोर्ट्स ये जज्बा हमारे भीतर लाता है।
0: तो कितना कुछ है इस दुनिया में जो खेल हमें सिखाते हैं, और खेल ही अगर गिराते हैं तो खेल ही हमें मनाते हैं। प्रधानमंत्री के ये शब्द कि जो खेलेगा वो खिलेगा, शायद कहीं ना कहीं वो विकसित भारत का लक्ष्य और वो तमाम सपने जो 2030, 32, 36 के लिए भारत ने देखे हैं, उनकी दिशा में भारत के बढ़ते हुए ये कदम। अब रुक करते हैं।

विश्व कप का, जहां भारतीय महिला टीम ने आज 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में खेले गए मुकाबले में भारत के लिए इशिका ने 43वें और नवनीत कौर ने 44वें तथा 47वें मिनट में भारत के लिए गोल किया। जर्मनी के लिए एकमात्र गोल लिन क्रिंग्स ने 59वें मिनट में किया, एकदम मैच के अंतिम क्षणों में। ये भारतीय महिला हॉकी टीम का पिछले 52 वर्षों में अगर देखा जाए तो विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसके पहले भारत ने 1974 में चौथा स्थान हासिल किया था विश्व कप में। इस साल भारतीय टीम ने एक बेहतरीन खेल दिखाया, हालांकि थोड़ी सी दुर्भाग्यवश रही, अगर टीम आखिरी मैच ड्रॉ नहीं होता तो शायद आज सेमीफाइनल में भारतीय टीम होती। अब कल भारतीय पुरुष टीम 7वें स्थान के लिए बेल्जियम से खेलेगी। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय टीम की नजर जीत के साथ विश्व कप अभियान समाप्त करने पर होगी। अब रुक करते हैं स्क्वाश का, जहां हंगरी में पीएसए बुदापेस्ट स्क्वाश ओपन में सेमीफाइनल में आज भारत के वीर चोटरानी और वेलनवल सेंथिल कुमार आमने सामने होंगे। चोटरानी ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबिनी को 3-1 से हराया था। वहीं वेलनवल सेंथिल कुमार ने विश्व के 18वें नंबर के खिलाड़ी मलेशिया के एन यो एनजी को 11-2, 11-9, 11-8 यानी कि 3-0 से हराते हुए एक बड़ा उलटफेर किया था और अंतिम चार में जगह बनाई थी। शतरंज में अगर नजर डाली जाए तो भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा शतरंज ग्रैंड चेस टूर के फाइनल में दूसरी बाजी में अमेरिका के फाबियानो करुआना के साथ ड्रॉ खेलकर सेमीफाइनल में वापसी करने से चूक गए हैं, क्योंकि उनको पहले बाजी में हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उनकी नजर होगी कि अब वो किस तरीके से ब्लेड्स एंड रैपिड राउंड में जीत हासिल करके वापस फाइनल में बढ़त बनाएं। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय, अपने सुझाव आप हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय, मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ, भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से 9111230887818 और 9111230887819 पर संपर्क किया जा सकता है। व्हाट्सएप कॉल और संदेश के लिए 9

0: 1-9-9-6-8-2-9-1-9-8-8 नंबर जारी किया गया है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए 9-7-7-9-8-5-1-3-1-6-8-0-7-9-7-7-9-7-9-1-0-7-5-0-0 और 9-7-7-9-8-1-0-3-2-6-1-1-7 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों की 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। नेपाल में छोछेन खोला और पुरेपू स्वांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार झील में अगले 3 दिन में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की।
1: बिहार जल संसाधन विभाग के अनुसार गंडक बैराज पर जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि नेपाल के देवघाट क्षेत्र में बारिश के कारण नदी के जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि
2: नेपाल में एक तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है, सबको चिंता भी करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीजें समान हो रही है।
1: किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बिहार में एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि अतिरिक्त बचाव दल की 4 टीमें तैयार रखी गई हैं। इधर पड़ोसी देश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने समस्तीपुर रेल मंडल में अलर्ट जारी किया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल के सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेफ के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
4: डिस्कशन आर एक्सपेक्टेड।
5: दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। इसपे व्यापार और निवेश, महत्वपूर्ण खनिज, स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क शामिल है। ये बातचीत भारत और उज्बेकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करेगी। स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल
0: रिलेशनशिप। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादो जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन की 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत विनिर्माण, नवाचार और निर्यात के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कनाडा के निवेशकों से भारत की बढ़ती क्षमता का लाभ उठाकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की जरूरतें पूरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सुधारों के जरिए हो रहे बदलाव और मजबूत आर्थिक वृद्धि से भारत कनाडा के बीच अधिक मजबूत और निवेश आधारित आर्थिक साझेदारी के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए

0: 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार का वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए की रक्षा निर्यात का लक्ष्य है।
1: आज का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
0: रक्षा मंत्री ने टैंक मरम्मत परियोजना को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और मानव कल्याण की प्रेरणा देते हैं। अहमदाबाद में आज गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा, बहुविषयक अध्ययन और कौशल आधारित विकास को प्राथमिकता दी गई है, जो महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप हैं।
2: पूज्य बापू का विचार था कि स्वाधीनता तब तक अधूरी रहेगी जब तक हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा श्रम और हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय न हो, अपना न हो। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति से हम बंधे हुए नहीं हैं तो स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं। और मन में स्वराज की ये परिकल्पना को अनेक प्रयोगों से जमीन पर उतारने का काम किया।
0: श्री शाह ने वर्ष 2047 तक सभी क्षेत्रों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर बल दिया। अहमदाबाद में फार्मा इनोवा अवार्ड्स 2026 में श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
3: रजनी भाई ने शुरुआत की और आज ये परंपरा ढेर सारे लोगों में रिसर्च के फील्ड में काम करने के लिए न केवल अनुकूलता बनी, आर्थिक मदद भी हुई। एक प्रकार से ये अवार्ड उनको एक्नोलेज करता है सोसाइटी में और इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होने में। ये बहुत बड़ी बात है जो रजनी भाई ने उस जमाने में सोची।
0: गृह मंत्री ने अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है।
5: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खेलों को विकसित भारत का हिस्सा बनाने के लिए सभी से सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। खेल दिवस के अवसर पर आज IFLU विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने की पहल से देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अधिक पदक जीत रहा है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। श्रीमती निधि खरे ने कहा कि सरकार हर वर्ष ये सुनिश्चित करती है कि कीमतों में बढ़ोतरी होने पर रियायती दर पर प्याज उपलब्ध हो।
6: हर वर्ष हम लोग कोशिश करते हैं कि प्याज में अगर कोई कीमतों की बढ़ोतरी होती है तो उसमें रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से सब्सिडाइज दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। प्याज की जो प्रोडक्शन है या अवेलेबिलिटी है उसमें किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। एक्सपोर्ट को भी देखें तो वो पिछले वर्ष के मुकाबले भी सामान्य है।
0: मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार

0: सुरक्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज मैच के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने 5वां स्थान हासिल कर लिया है। आज खेले गए मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में भारत के लिए इश्का ने 1 और नवनीत कौर ने 2 गोल किए। जर्मनी के लिए एकमात्र गोल लेन क्रिंक्स ने किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय। मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ। भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India steps up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to flash flood tragedy. 290 Indians among nearly 1300 missing people. Death toll rises to 359. Heavy rain likely over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and northeastern states till Saturday. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan from Saturday. Defence Minister Rajnath Singh lays foundation stone for T-series tank overhauling project at Jabalpur in Madhya Pradesh, terms it another milestone in nation's journey towards self-reliance. Government begins targeted release of onions from buffer stock to ensure adequate availability and moderate seasonal price pressures in coming months. And in men's cricket, second test between India and hosts Sri Lanka ends in a draw. Visitors clinch the series 1-0. And now the news in detail. India has stepped up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. Death toll in the yesterday's massive flash floods in Nepal has reached 359 as authorities race against time to find thousands of missing people, including 290 Indians. Authorities in Tibet and Nepal have reported over 1,300 people missing as of today. Out of these, many are foreigners. Both authorities reported that people from more than 30 countries are missing. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far in Nepal. These include 63 workers of the Trishuli 1 project as well as 21 people from Tamil Nadu. The ministry said that contact with 290 Indians have not been established so far. Addressing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Indian Embassy in Kathmandu is in touch with the project authorities to collect information as communication links in the affected area have been disrupted. Mr. Jaiswal said the Indian authorities are making all possible efforts in coordination with the Nepalese authorities to establish contact with the stranded Indians and ensure their safety.
2: Prime Minister yesterday spoke to the Prime Minister of Nepal, conveyed our deepest condolences, conveyed that India stands in solidarity with people of Nepal, as also offered all possible